मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 41 सेकेंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रातःकाल सूर्य की किरण धरती का स्पर्श कर नई ऊर्जा का संदेश दे रही है। सुरम्य प्रकृति में पंछियों की चहचहाहट मन को शांति प्रदान कर रही है, मानो सुरम्य वातावरण कह रहा हो दिन की शुरुआत सुबह का समय नहीं बल्कि स्वास्थ्य का सबसे सुंदर उपहार है। तो श्रोताओं, उठिए, टहलिए, योग करिए, प्रसन्न मन से जीवन को संतुलित बनाइए।

0: मन को शांति प्रदान कर रही है, मानो सुरम्य वातावरण कह रहा हो दिन की शुरुआत सुबह का समय नहीं बल्कि स्वास्थ्य का सबसे सुंदर उपहार है। तो श्रोताओं, उठिए, टहलिए, योग करिए, प्रसन्न मन से जीवन को संतुलित बनाइए, स्वस्थ सुबह को स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी बनाइए। सुबह की सुंदर बेला के साथ हम भी आ चुके हैं लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारे श्रोता रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत

0: ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में हमारे किसान भाई सुनेंगे खरीफ सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं, वहां खरीफ सब्जियों की खेती कैसे करें, इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर BP शाही साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ सब्जियों की अगेती खेती करनी है तो अभी से शुरुआत कैसे करें, क्या कुछ करें किसान भाई बहन?
3: नमस्कार किसान भाई एवं बहनों, चूंकि बात होती है खरीफ फसल की, सब्जियों की कैसी फसल लें, तो जैसे ही आप देखते हैं कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी उस समय हम नर्सरी पे विशेष ध्यान देंगे कि अगेती हम नर्सरी कौन सी लें।
2: जी, तो शुरुआत करें कि खरीफ में कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी खेती फायदेमंद होगी।
3: किसान भाइयों, खरीफ की बात होती है तो टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, अगेती फूल गोभी है, खरीब प्याज है और हरी मिर्च है। इसके साथ साथ किसान भाई जो बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी है, करेला है, खीरा है, चिकनी तुरई है, धारीदार तुरई आती है। इसके साथ ही आप लोबिया की फसल भी हम लेते हैं
2: और उनका स्वस्थ और प्रमाणित बीज इस्तेमाल करें बुआई में। अब कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी नर्सरी डालनी होगी तो उसके लिए नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव महत्वपूर्ण है।
3: हाँ किसान भाई, नर्सरी का स्थान का चुनाव ऐसे जगह करना चाहिए जहाँ की हमारा जल भराव ना हो, क्योंकि जब हम नर्सरी का स्थान चुनाव करते हैं तो समतल क्यारी की अपेक्षा हम ऊपर उठी हुई क्यारियां बनाते हैं जिससे कि हमारा उसमें पानी ना लगे, जिसमें हमारी नर्सरी ना खराब हो, ये विशेष ध्यान देना है।
2: डॉक्टर साहब, अब जहाँ नर्सरी डालनी है तो उस मिट्टी का, उस भूमि का उपचार भी करना होगा ताकि रोग दोग या कीड़ा मकोड़ा न लगे।
3: नर्सरी 10 से 15 दिन पहले उसकी मृदा का सौरीकरण, सॉइल सोलराइजेशन करना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए किसान भाई जुताई करके उसमें फार्मलिन आता है 10 से 15 ml प्रति लीटर पानी में घोल तैयार कर लें और इसकी मात्रा अगर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 4 से 5 ml 3 से 4 मीटर गहराई पे अगर आप डाल करके ऊपर से सफेद पन्नी 200 गेज की आती है, चारों तरफ से ऐसे दबा दें कि मिट्टी से कि हवा का संचार अंदर न जाए, अंदर का बाहर न जाए, जिसमें क्या होता है इसमें कीट और बीमारियां जो लगभग 1 फीट की 2 फीट की गहराई तक हमारी पूरी मर जाए। और खास बात होता है कि जैसे ही हम नर्सरी लगाते हैं उसमें खर पतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है तो उससे भी हम नीताज पा जाते हैं।
2: यानी भूमि उपचार का फायदा होगा कि रोग दो कीड़ा मकोड़ा और खर पतवार तीनों से मुक्ति हो जाएगी।
3: जी जी,
2: तो नर्सरी की क्यारियां कैसे बनाएं किसान भाई बहन, उनकी साइज क्या होगी और आपने शुरू में ही कहा कि उठी हुई क्यारियां होनी चाहिए तो कितनी ऊंचाई?
3: देखिए, अगर हम बात करते हैं कि नर्सरी की जैसे जाड़े वाली फसल होती है उसमें समतल क्यारी बनाते हैं और इसमें उठी हुई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पे हम इसकी क्यारी बनाए, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं, लंबाई आप आवश्यकता अनुसार रखें, फिर उसके बाद लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की एक नाली बनाए, फिर दूसरी क्यारी उठी हुई बनाए और उसमें जो हम खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद प्रति वर्ग

0: मीटर के हिसाब से 2 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद है तो 500 ग्राम डालना चाहिए। अगर आपकी भारी मिट्टी है तो 2 किलोग्राम रेत आप मिला करके उसमें करें। और चूंकि जब चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा ना रखें, जब 1 मीटर से ज्यादा रखेंगे तो किसान भाई क्या होता है, जब निराई गुड़ाई करना होता है तो उसमें दिक्कतें होती हैं, हमारा नर्सरी का नुकसान होता है।
1: फिर जो भी खरीफ की सब्जियां हैं, चाहे वो नर्सरी डालना है या सीधी बुआई करनी है, तो बीज का उपचार भी करना होगा।
0: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बीज का उपचार हमको करना बहुत आवश्यकता है। कि अगर हम बीज की बुआई के पहले 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करके ही बुआई करें, जिससे हमारी स्वस्थ नर्सरी होगी।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 87-550-110-86 87-550-110-86 87-550-110-86।
1: डॉक्टर बीपी शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ सब्जियों की उन्नत खेती, इस बारे में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनायक प्रताप शाही से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते हुए हम शांति, सफलता और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
3: द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में धर्म रक्षार्थ पृथ्वी पर अवतरित हुए कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर नीति परक शिक्षा लोक कल्याण हेतु दी है। इस महासंग्राम में अधर्म की पराजय तथा धर्म की विजय से यह संकेत मिलता है कि धर्म का मार्ग दुष्कर होने पर भी कल्याणकारी है। धर्मानुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा सदा सुरक्षित रहता है। इस धर्म के नियंता कोई मानव नहीं अपितु सर्व नियंता साक्षात परमेश्वर है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब समाज में अन्याय की अभिवृद्धि होने लगती है तब धर्म के रक्षणार्थ, सज्जनों के रक्षणार्थ तथा दुष्प्रवृत्तियों के दमनार्थ भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है जब भीष्म कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, जब आप जानते हैं कि युद्ध से महाविनाश होने वाला है तो आपने युद्ध क्यों नहीं रुकवाया। कृष्ण को यह ज्ञान था कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होना अनिवार्य है, इसलिए कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मैं युद्ध रुकवा देता तो सर्वत्र अधर्म का साम्राज्य छा जाता और धर्म नष्ट हो जाता। कृष्ण भगवान है, वह समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यह शोभा, संपत्ति, ज्ञान और मोक्ष के साधन वैराग्य आदि गुणों से संपन्न है। उनकी वाणी लोक कल्याणकारी है, सच्चित आनंद की वर्षा करने वाली है। उन्होंने अर्जुन को सुपात्र समझकर धर्म का उपदेश दिया जो नीति परक है, क्योंकि अर्जुन में लोभ नहीं है, वह कर्तव्य परायण है, दूसरों को संकट से उबारने के लिए स्वयं दुख सहने को तत्पर है। राजा का मुख्य धर्म लोक हित है, राष्ट्र रक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना अर्जुन का कर्तव्य था। इसलिए आत्मज्ञान परक नीति का उपदेश जगत गुरु भगवान कृष्ण ने साक्षात अर्जुन को दिया। अर्जुन चूंकि क्षत्रिय थे इसलिए उनमें रजोगुणमयी वृत्ति होना स्वाभाविक है, उसे दूर करने के लिए युद्ध तो आवश्यक था, क्योंकि क्षत्रिय कुल में जन्मे व्यक्ति का युद्ध करना धर्म है और उसे युद्ध भूमि में प्राण भी त्यागना पड़े तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को जो मोहग्रस्त होकर युद्ध न करने का निर्णय ले चुका था युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हे परंतप, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कृष्ण प्रत्येक मानव को सुकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मण नैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता से मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। जीवन में सतत कार्यों में

0: लगे रहने से निस्वार्थ भाव का विकास हो सकता है। कर्म में तत्पर रहने से अभ्यास वशात कर्म कुशलता आएगी, कार्य कुशल होने पर गुणवत्ता दक्षता भी आएगी। इस प्रकार उत्तरोत्तर सक्रियता, कार्य कुशलता तथा सृजनशीलता से समृद्धि का द्वार अनायास खुल जाएगा। कृष्ण ने व्यक्तित्व विकास के लिए गीता में सद्गुणों का संपादन आवश्यक बताया है। अभयम् सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योगव्यवस्थितिः दानम् दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अर्थात निर्भयता, सत्त्व, शुद्धि, ज्ञान योगव्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और ऋजुता अर्थात विनम्रता, ये तत्व व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने से जैसे अर्जुन को विजयलक्ष्मी तथा युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी प्राप्त हुई, उसी प्रकार मानव को भी कार्य सफलता रूप विजयश्री तथा समृद्धि रूप राजलक्ष्मी प्राप्त होगी।
1: कृष्ण नीति, ये विषय था आज के सुविचार का। आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ, और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जब हृदय में माँ अंबे का वास हो तो जीवन में किसी भी अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं। माँ की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है।

जीवन की डोर प्रभु के हाथों में सौंप दें तो चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं सच्चा समर्पण वही है जहां भक्त अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में लीन कर दे।

0: प्रभु का सुमिरन एक अभिवादन नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और मर्यादा का संपूर्ण जीवन दर्शन है।
1: तन तंबूरा तार मन

0: जब मन में व्याकुलता हो तो प्रभु का स्मरण करें, प्रभु के चरणों में रहकर ही कर्म करें और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें।
1: श्री रामचंद्र आश्रित पारिजात समस्त कल्याण गुणा विराम सीता मुखाम्बुरुः चञ्चरीकः।

जहां पर ईश्वर की छाया हो वहां पर प्रभु का सानिध्य मिलता है। ईश्वर अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनाए रखते हैं और भक्त जन अपनी खुशियों की प्राप्ति करते हैं। तो अपनी दैनिक

इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना अब संपन्न होती है।

नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्ज पर। किलो हर्ट्ज के साथ ही आप आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। अब आइए करते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 206 में अपनी सेना और अयोध्या वासियों के संग आगे चलते हुए भरत का कादमगिरी पर्वत के समीप पहुंचने का प्रसंग।

अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और शोभना पारगांवकर, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। ४४७ किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

और इस समय प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: आप हमारे कार्यक्रमों को सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्स पर, और कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में सुनेंगे संस्कृत समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतं अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च 5-दिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थदिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66-200 कोटि जनाः तीव्र खाद्यासुरक्षया पीडिताः सन्ति।

0: में विशेष स्थान रखती है। हम बात कर रहे हैं इलायची की। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है और इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि कई औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में इलायची के क्या क्या फायदे हैं और इसे हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह उपयोग कर सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें पाचन तंत्र की। इलायची में मौजूद प्राकृतिक तेल पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखने में मदद करते हैं। जब भी हमें भारीपन महसूस हो या खाना ठीक से पच न रहा हो तो इलायची चबाने से पेट की गैस और अपच की समस्या में राहत मिलती है। इलायची के सेवन से गैस्ट्रिक जूस का स्राव पड़ता है जो पाचन को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इलायची को चाय में डालकर पीने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और भूख भी बढ़ती है। मुंह की ताजगी के लिए भी इलायची एक बेहतरीन उपाय है। अगर आपको मुंह से दुर्गंध की समस्या हो रही है तो इलायची की एक दो फलियां चबाएं। इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और आपको ताजगी का एहसास दिलाता है। इलायची का ये गुण खासकर सर्दियों में बहुत काम आता है जब मुंह की सफाई में थोड़ी कमी रह जाती है। इसके अलावा ये मसूड़ों की सेहत को भी बनाए रखता है और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इलायची का उपयोग सर्दी और खांसी में भी बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर गले में खराश या खांसी की समस्या हो जाती है। इलायची में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण गले की समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। इलायची को शहद के साथ खाने से गले की खराश में आराम मिलता है और खांसी कम होती है। इसके अलावा इलायची का काढ़ा भी गले को आराम देने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब हम बात करेंगे दिल की सेहत की। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। सर्दियों में जब रक्तचाप बढ़ने का खतरा रहता है इलायची का सेवन इसे संतुलित रखने में मददगार साबित होता है। इलायची का सेवन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है जिससे दिल स्वस्थ रहता है। इलायची का उपयोग मानसिक सेहत को बेहतर बनाने में भी मददगार होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से तनाव कम करने वाले तत्व होते हैं जो मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इलायची की खुशबू तनाव और चिंता को कम करती है और मूड को बेहतर बनाती है। इसके लिए आप इलायची का उपयोग चाय में कर सकते हैं या फिर इसे सीधे चबाकर इसका आनंद ले सकते हैं। इलायची की चाय विशेष रूप से ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। इलायची का सेवन करने के विभिन्न तरीके हैं। आप इसे चाय में डाल सकते हैं, मिठाइयों में इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर इसे यूं ही चबाकर भी खा सकते हैं। सर्दियों में इलायची का उपयोग दूध के साथ करने से शरीर को गर्माहट मिलती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा इलायची के पाउडर को खाने में डालकर भी इसके फायदों का लाभ उठाया जा सकता है। ये न केवल स्वाद को बढ़ाता है बल्कि भोजन को भी पाचन के लिए अधिक हल्का बनाता है। श्रोताओं, ये कहना गलत नहीं होगा कि इलायची एक छोटी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मसाले के रूप में हमारे रसोई घर में सदैव मौजूद रहती है। ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभों का आनंद उठाइए। चाहे वो पाचन हो, दिल की सेहत हो या तनाव कम करना हो, इलायची हर जगह काम आती है। श्रोताओं, आज की ये चर्चा जो हमने इलायची पर की आपको जरूर पसंद आई होगी। श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं को जानकारी दे रही थी गुणकारी इलायची के बारे में। सुबह के 7:05 हुए हैं। आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय होगा विरासत। इस विषय पर बातचीत सुनिएगा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री से।

सुबह 10:20 पर आप सुनेंगे एनडीए गवर्नमेंट के 12 साल पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से। सुबह 9:15 का समय होता है जिले की हलचल का। आज के जिले होंगे एटा और गोरखपुर। उर्दू कार्यक्रम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा हमारे मेहमान में मशहूर शायर जौहर कानपुरी से शमशुल आरफीन की गुफ्तगु। पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। आत्मनिर्भर भारत खिलौना व्यवसाय विषय पर सुनना ना भूलें अनिल कुमार सिंह की वार्ता हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान का राग अलहैया बिलावल में सरोद वादन। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का रागपुरिया कल्याण में सितार वादन। सतीश चंद श्रीवास्तव के गाय भोजपुरी लोकगीतों का आनंद आप लेंगे लोक रंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर सरस्वती देवी तिवारी की वार्ता सुनवाई जाएगी बेटी को दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करें भेंट। खरीफ में भूमि और बीज शोधन ये विषय है डॉक्टर प्रियंका सिंह से की गई भेंट वार्ता का जिसे आप सुनेंगे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे वार्ता प्रेम के विविध रूप। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नव दृष्टि क्रम में जानकारी का विषय होगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन विषय पर सुनना ना भूलें अदिति उमराव से की गई भेंट वार्ता लोकायतन कार्यक्रम में। प्रसारण समय होगा शाम 6:30। भेंटकर्ता होंगी ज्योति वर्मा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सुनिएगा डॉक्टर नेत्रपाल यादव से की गई भेंटवार्ता अगेती फूल गोभी की उन्नत कृषि तकनीक। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई गजलों का लुत्फ उठाइएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर। पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर और सदाबहार नगमों का आनंद लीजिएगा दोपहर 12:30 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम हमारे श्रोता सुनते हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें पूर्वाह्न 11:00 से और आपके ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे आपके मेल आपके गीत में सुबह 8:45 पर। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की विविधा में। अच्छा बताइए, आपने कल रात खाना खाया और जो बचा वो क्या किया? कूड़ेदान में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया में हर साल अरबों से ज्यादा टन खाना सीधे

कूड़े में फेंका जाता है। तो और भारत की बात करें तो हम अकेले हर साल करोड़ों टन खाना बर्बाद करते हैं, वो खाना जो किसी भूखे का पेट भर सकता था। तो आज की विविधा में बात संधारणीय गैस्ट्रोनॉमी दिवस की, जो हर साल मनाया जाता है 18 जून को। साल 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, हर देश की, हर सभ्यता की पहचान है, और इसीलिए हर साल 18 जून को ये दिवस मनाने की घोषणा की गई। पहली बार ये दिवस मनाया गया 18 जून साल 2017 को। इस दिन यूनेस्को और FAO यानी यूनाइटेड नेशंस के दो बड़े संगठन मिलकर दुनिया को जागरूक करते हैं। सोचिए, जब संयुक्त राष्ट्र को खाने की चिंता हो जाए तो मामला कितना गंभीर है। संधारणीय गैस्ट्रोनॉमी दिवस हर खाने के शौकीन लोगों के लिए बहुत खास है। गैस्ट्रोनॉमी का सीधा मतलब है खाने की कला। कहां से आया खाना, कैसे बना, कैसे परोसा गया, ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि खाने की तैयारी, उसकी कहानी और उसका महत्व भी है। सोचिए, हर एक व्यंजन का अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी कहानी होती है, और जब हम इसको संधारणीय तरीके से बनाते और खाते हैं तो हम धरती की रक्षा भी कर रहे होते हैं। अब इसमें जुड़ा एक शब्द सस्टेनेबल यानी टिकाऊ, मतलब ऐसा खाना जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो बल्कि हमारे किसान, हमारा पर्यावरण सबके लिए अच्छा हो। दुनिया भर में ये दिन मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों को खाने के महत्व और उसकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना, भोजन की बर्बादी को रोकना। ये दिन खासकर उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो खाना बनाने और खाने के तरीके में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ नई क्रांति लाना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि पूरे विश्व में हर साल अरबों टन खाना बर्बाद होता है, और दोस्तों दुख की बात तो ये है कि जब यही खाना सड़ता है, गलता है, तो दुनिया की कुल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 8-10% निकलता है, मतलब हमारी थाली में बचा हुआ खाना जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। वहीं दूसरी तरफ न जाने कितने लोग रात को भूखे पेट ही सो जाते हैं। ये विरोधाभास नहीं तो क्या है? एक तरफ थाली में खाना फेंका जा रहा है, दूसरी तरफ बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। अगर हम संधारणीय गैस्ट्रोनॉमी अपनाएं तो ये बर्बादी काफी कम हो सकती है, और तो और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने से हमारी संस्कृति भी तो बचती है। इसीलिए ये दिन सिर्फ एक दिवस नहीं, ये एक जागरण है।

अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो खेत से थाली तक खाना कहाँ से आया? स्थानीय किसान से या हजारों किलोमीटर दूर से? जितना पास से आएगा उतना कम कार्बन फुटप्रिंट। दूसरा, हमारे देश में सैकड़ों किस्म के अनाज, दालें और सब्जियां हैं। आज हम सिर्फ चंद फसलों पर निर्भर हो गए हैं। तो दोस्तों, पुराने बीजों और देसी फसलों को बचाना भी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी है। और तीसरा है फूड कल्चर को सम्मान दें। हर क्षेत्र का खाना उस मिट्टी की पहचान है। राजस्थान की दाल बाटी से लेकर केरल के सद्या तक ये सिर्फ खाना नहीं, विरासत है। यूनेस्को ने दुनिया के 36 शहरों को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है।

याद रखें दोस्तों, बदलाव आते हैं छोटी छोटी आदतों से। उतना ही खाना थाली में परोसें जितना हमें खाना हो। पास के किसान का उगाया हुआ सामान ही खरीदें। इससे किसान को फायदा, आपको ताजा खाना और धरती को मिलेगी राहत। मौसमी खाना सबसे सस्टेनेबल होता है। कल की दाल आज का सूप बन सकती है, बचा हुआ चावल कटलेट बन सकता है। बच्चों को सिखाएं खाने की कद्र करना, और ये पाठ स्कूल से नहीं, घर से शुरू होता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता माना जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये हमारी पुरानी संस्कृति की तरफ वापसी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर किसान की मेहनत मायने रखती है, हर बच्चे की भूख मायने रखती है, हर निवाला मायने रखता है, धरती के लिए, हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो दोस्तों, 18 जून संधारणीय गैस्ट्रोनॉमी दिवस केवल स्वाद का जश्न नहीं, बल्कि धरा, संस्कृति और समाज का उत्सव भी है। आइए इस दिवस पर संकल्प लें, खाएं स्वादिष्ट और सोचें टिकाऊ। आज की विविधा में बस इतना ही। मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। आपको हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख और

0: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
1: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही कार्य योजना शासन को भेजी जाए, जिससे उन्हें इस माह के अंत तक स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर संवेदनशील है तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के व्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यों में विलंब है या जिन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किए हैं, उनकी जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भारत के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है।
2: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
4: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
3: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
5: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है, पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन

0: करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में बुटला गांव के पास कल एक ट्रैक्टर व ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर ये टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कल हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों के बदौलत अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर और 3 गेंद पर 232 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगोत्री से गंगा सागर योग यात्रा के अंतर्गत कल वाराणसी में योग और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत पिछली 13 जून को गंगोत्री से हुई थी। 20 जून को गंगा सागर में इसका समापन होगा। वाराणसी इस यात्रा का एक पड़ाव रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज और कल कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में पूर्वी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना।

0: अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ मॉर्निंग प्रोग्राम, और अब आइए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान का राग अल्हैया बिलावल में सरोद वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खान का राग अलहिया बिलावल में सरोद वादन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। श्रोताओं, नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति हमें। आप सभी को नमस्कार। बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज़ पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: आने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम

0: में भाग लेंगी।
1: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्ते ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो चुके हैं। इसी के साथ समय होता है कार्यक्रम नमस्ते बरेली का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली। हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात भाई उठ जाइए। कार्यक्रम है नमस्ते बरेली, एक ऐसा कार्यक्रम जिसका आप सभी को हर रोज रहता है इंतजार, क्योंकि इसमें आपके शहर से जुड़ी हुई और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हमेशा हम अपनी सेहत के बारे में बात करते हैं और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तो सेहत का ख्याल रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि 15 जून से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं योग पखवाड़ा। ये पखवाड़े का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे श्रोता या जो लोग थोड़ा सा सेहत के प्रति लापरवाही दिखाते हैं वो भी इस पखवाड़े के द्वारा और इससे मिली हुई जानकारियों के द्वारा अपनी सेहत के बारे में सोचें, अपने एक स्वस्थ जीवन के बारे में सोचें। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। इस बार 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अभी थोड़े से दिन बचे हैं तो आप भी अपनी हेल्थ के प्रति सजग हो जाइए, और अगर आप थोड़ा सा भी आलस दिखाते हैं, लापरवाही दिखाते हैं तो भाई उसको बंद कर दीजिए। इसी विषय पर यानी योग के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आज आप सुनेंगे एक वार्ता डॉक्टर महेंद्र योगाचार्य से।
1: हेलो
2: हेलो
1: सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि 15 जून से लेके 30 जून तक योग पखवाड़ा चल रहा है और हर साल हम 21 जून को योग करते हैं, योग दिवस मनाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर?
2: देखिए, हमारा जो है योग पखवाड़ा चल रहा, ये अवेयरनेस के लिए चल रहा है कि सभी लोग सजग हो जाए अपने स्वास्थ्य के लिए।
1: जी,
2: तो योग में केवल ये नहीं, हमारे आसन ही शामिल हैं। योग एक संपूर्ण विज्ञान है, साइंस है, जीवन जीने की कला समझिए, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने जिसके बारे में कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो हम यम नियम यानी हमारे समाज भी सही रहे, हम भी सही रहे। यम अहिंसा सत्य अष्टय ब्रह्मचर्य परग्रह, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। यानी सोच साफ सफाई, ये अब वो चाहे हमारी शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे विचारों की हो, कैसी भी, हमें हर तरह की देखिए साफ सफाई चाहिए ना। मान ली अब आजकल बहुत सारी बीमारियां होती जा रही हैं, साइकोसोमेटिक जिन्हें कहते हैं, जैसे हमारे जो है लोगों की एंजाइटी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा, यहाँ तक कि हमारे नेगेटिव थॉट से कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। तो अब योग क्या करता है इसमें, योग में बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, जैसे हम डीप ब्रीथ करें, गहरी लंबी सांस ले छोड़े
1: जी।
2: तो जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे तो कभी आपने अनुभव किया होगा कि हमें गुस्सा आती, तेज सांसें चलने लगती है, तो गहरी लंबी सांस लेने पे वो चीज भी तो दूर की जा सकती है।
1: बिल्कुल,
2: और जैसे हम गहरी लंबी सांस लेते हैं, माली आसन कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो सांस को हमने गहरा अंदर भरा, फिर होल्ड किया, फिर हमने अंग को तनाव मिलाए, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और हमारी प्राण ऊर्जा इस शरीर में बढ़ते हैं, और जो हमारे बीमार करने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ये सब इनका स्तर कम होता चला जाता है। हैप्पी हार्मोन्स हमारे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, HGH, गाबा, इस तरह के ये सारे हार्मोन्स इनका स्तर बढ़ने लगता है।
1: जी, तो कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो स्वस्थ रह सकता है।
2: हाँ, बल्कि और मैं दो स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक,
1: जी
2: चारों तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और बल्कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। एक सूत्र आता है योग दर्शन में, गीता में आता है, योगा कर्म सु कौशलम। ठीक है, ये सूत्र है, योग क्या है, कार्य करने की क्षमता, दक्षता। तो ये सब हमारी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। मैंने अभी बच्चों को सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चे, उन्हें एक्सरसाइज कराई थी मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, उन बच्चों की आंखों पट्टी बांध देते हैं, पूरी की पूरी बुक डाउनलोड हो जाती, वो भी 1-2 मिनट में।
1: जी,
2: बुक कोई भी ले ले, आंखों पट्टी बंधी, पूछता है इस पेज नंबर क्या, इस पेज नंबर क्या, बच्चों बताते चले जाते हैं, उनके पास बुक भी नहीं तब भी।
1: क्या बात है, तो मतलब मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत करता है अगर,
2: बहुत बहुत मजबूत, निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है
1: जी,
2: हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, टेलीपैथी, बहुत सारी साइकिक और पावर्स जो इन सब में जो है

0: बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है।
1: महेंद्र योगाचार्य जी, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और योग के इतने सारे लाभ बताए कि किस तरह से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से भी योग हमारा साथ देता है और हमें मजबूत बनाता है। आज आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: वंस अगेन कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आप सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि सभी श्रोता जानते हैं कि आकाशवाणी बरेली ने कल यानी 17 जून को सेलिब्रेट किया था अपना स्थापना दिवस यानी अपना हैप्पी बर्थडे। और इस खास दिन पर यहाँ पर ढेर सारा जो आकाशवाणी का केंद्र है एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ना केवल केंद्र के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया बल्कि जो श्रोताओं का प्यार है, ढेर सारे श्रोता भी यहाँ पर शामिल हुए। और एक सुबह 6 बजे से लेकर

0: उत्थान का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके अलावा ढेर सारे श्रोताओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ ही साथ योग के प्रति सचेत करने के लिए योग की एक वर्कशॉप का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने योग किया और खुद को हिट और फिट बनाने की कोशिश की। अभी थोड़ी देर पहले हमने योग की बात की थी ना कि योग कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर भी सारे कर्मचारियों के साथ साथ श्रोताओं को भी हेल्दी और फिट रखने के लिए योग करवाया गया। इसके अलावा बाद में सेलिब्रेशन हुआ जो बहुत ही भव्य आयोजन था। आकाशवाणी न केवल एक मनोरंजन का माध्यम है हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सभी के लिए, बल्कि ये सूचना और जानकारी का भी एक ऐसा माध्यम है जो सभी के दिल को छूता है। और शायद इसी वजह से हमारे श्रोताओं का प्यार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उनकी हमसे कनेक्टिविटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब हमारे कुछ समय में जो हमारे केंद्र अधिकारी हैं उनके जो बहुमूल्य एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारे श्रोता अब हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो 90 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन हो या फिर आकाशवाणी बरेली के स्थापना दिवस का ही सेलिब्रेशन क्यों ना हो, अब श्रोता और हम साथ मिलके अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग आपको एक हमारी श्रोता हैं गुंजन रावत, उनके उनसे की हुई बातचीत आपको सुनवाते हैं कि आखिर वो क्या सोचती हैं आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर, और उनकी कुछ विशेष भी हैं, तो आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम गुंजन रावत है, मैं आकाशवाणी की श्रोता हूँ। आकाशवाणी स्थापना दिवस पर समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने अपने गौरवशील इतिहास में देश के कोने कोने तक सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक मूल्य को पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि भारत की विविधता, संस्कृति, लोक परंपराओं और राष्ट्र एकता का सशक्त सेतु रहा है। आपदाओं, राष्ट्र महत्व के अवसरों तथा जनहित से जुड़े विषयों पर भी विश्वसनीय जानकारी प्रदान कर आकाशवाणी ने सदैव जनता का विश्वास अर्जित किया है। आज डिजिटल युग में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जनसेवा की भावना के कारण करोड़ों श्रोताओं के हृदय में विशेष स्थान रखती है। यह मंच देश के भाषाई, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर योगदान दे रहा है। इस स्थापना दिवस पर मैं आकाशवाणी के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्घोषकों, कलाकारों तथा श्रोताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती हूं और कामना करती हूं कि आकाशवाणी इसी प्रकार जनसेवा, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक समृद्धि के अपने महान उद्देश्य को आगे बढ़ाती रहे। पुनः आकाशवाणी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। नमस्ते।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली, और हम बात कर रहे थे अभी आकाशवाणी बरेली के स्थापना दिवस की, यानी हैप्पी बर्थडे की, जो कल बहुत ही भव्य रूप से सेलिब्रेट किया गया श्रोताओं के साथ मिलके। और अन्य श्रोताओं के भी विचार जान लेते हैं।
3: आकाशवाणी बरेली के स्थापना दिवस के आज के कार्यक्रम की अब औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आगे की बातें संजय जी आपके साथ समक्ष करेंगे।
4: हो गई कि तुमने बोला क्यों एक डेढ़ मिनट
5: कहना कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच संजय जी।
2: तो देखिए कैसे हमारे श्रोता कह रहे हैं, और सभी केंद्र के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने ये सेलिब्रेशन किया था कल इस खास दिन का, किस तरह से वो कह रहे हैं कि कभी अलविदा ना कहें, आप हमारे साथ हमेशा बने रहें 100.4 FM पर।
4: क्योंकि
2: और आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अखबार की सुर्खियों की ओर। एक बहुत ही बड़ी न्यूज जिसका भाई बरेली वासियों को बहुत बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार था। जी हम बात कर रहे हैं 35 दिन बाद चौपुला पुल खुला है और हजारों वाहनों ने भरा भर्राटा। बदायूं और रामपुर रोड से वाहनों का आवागमन, सुभाष नगर पुलिया रोड पर काम जो हुआ था वो जाम की वजह से सब कुछ शुरुआत हो चुकी है। बरेलीवासी बहुत बहुत परेशान हो चुके थे कुछ दिनों के लिए जब चौपुला पुल की मरम्मत के लिए उसको बंद किया गया था, क्योंकि लोगों को ट्रैफिक की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। रोड डाइवर्जन हो चुके थे, एक जगह पे जो 5 मिनट का समय लगता था उसकी जगह 15 से 20 मिनट का समय लग रहा था, लेकिन अब उनकी तकलीफ खत्म हो चुकी है और लोग काफी खुश भी हैं। तो भाई आपकी परेशानियां दूर हो जाएं और आप सभी खुश रहें और सुनते रहें 100.4 FM, यही तो हम चाहते हैं। तो आइए अब आपको इसी बात पर सुनवाते हैं ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: कार्यक्रम नमस्ते बरेली, आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। और आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगर लगे कोई खतरा या डर तो बेझिझक डायल करें 112। जी हाँ, अगर आपको रास्ते में कोई खतरा महसूस हो रहा है या फिर डर लग रहा है या फिर अन्य कोई समस्या हो रही है तो आप बेझिझक 112 नंबर डायल कर सकती हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी लोकेशन पर पुलिस आपकी मदद करेगी। शहर से लेकर देहात तक बरेली पुलिस आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। इसीलिए किसी भी अपराधी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बातें दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में SP साउथ अंशिका वर्मा ने महिलाओं समेत अन्य लोगों को

बताई। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण नंबरों के बारे में भी जानकारी दी। पढ़िए उनके और लोगों के बीच के कुछ और जो सवाल और जवाब हुए थे वो आप अपने न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड समय है तो हम आपको बस उन खबरों से जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ बरेली कॉलेज में स्नातक प्रवेश की दौड़ आज जारी होगी मेरिट। तो भाई जो लोग बरेली कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो दिल थाम लीजिए, आज आपकी मेरिट आने वाली है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बीटेक इन आईए में सवरेगा छात्रों का भविष्य। तो जो भी बच्चे इस सब्जेक्ट में वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज है।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम नमस्ते बरेली से अमृता को दीजिए अनुमति, क्योंकि अब घड़ी इशारा कर रही है कि आपसे इस कार्यक्रम से बाय बाय की जाए और अलविदा ली जाए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम।

104.4 FM पर आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं बाल कृष्ण भारती के स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी आवश्यक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर से सुन लें। विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
5: वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम में सुन का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

Whatever.

0: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
1: आंखें खुली हो या हो बंद।

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाजों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। डीजे आ गया, आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को नमस्कार।

भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
1: संगीतकार खयाम।
0: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दानसिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी.एन. शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है, और गीता दत्त ये गाना गा रही है।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मी

कांत ने मैंडोलिन और प्यारेलाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

0: जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।
1: रामे दिल किस से कहूं कोई

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। इसी के साथ समय होता है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो आप सभी श्रोताओं का मैं अमृता कार्यक्रम आपकी पसंद में बहुत बहुत बहुत सारा स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। इस आशा के साथ कि आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे और अब सभी ने अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम भी बढ़ा लिया होगा, क्योंकि कार्यक्रम में आपके ढेर सारे नाम और आपकी पसंद को हम शामिल करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत जिसको सुनने के लिए आप सभी ने फरमाइश की है, अनुरोध किया है, ये गीत है इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने, लेकिन पहले आपको गीत का नाम बता दे रहे हैं। फिल्म का नाम है चिट्ठियां, आवाज है लता, क्षमा कीजिएगा, गीत के बोल है चिट्ठी, आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म

का नाम है हिना, बोल हैं नागेश लालपुरी के और संगीत है रविंद्र जैन का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से ईशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया और शोएब खान। इसी गीत को सुनना चाहा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। कृष्णा

कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है गंगा सिंह रावत ने रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से, साथ में है इनके परिवार के सभी सदस्य। और अगला जो कमेंट है वो है जमशेदपुर कदमा जमशेदपुर से, लिखने वाले हैं चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल। दादा बाबू रोड गिरीहीड़ झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन आवाज, हसन नवाज, अब बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मरोतराव पांचाल व परिवार के सभी सदस्य। शाहजी नगर देंगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और साथ में है गुरशब्द सिंह राहुल। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी गीत को सुना चाहे दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तनुजा और ईशान देवांगन। पाकुड़ झारखंड से उत्तम सिंह, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और बोहड़ा गांछी। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट है ग्राम हिंगड़ी आलोद जिला रतलाम एमपी से, लिखने वाले हैं जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। गांव गड़ी कोटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम और साथ में है अक्रम अंसारी, शानिया, मोहम्मद इलियास और मुशाहिद हुसैन, अक्सा, आयशा, उमर अंसारी और समीना अंसारी। इसी गीत को सुना चाहे सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। ग्राम शंकरपुर पोस्ट सावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता यादव, अनीता, सूरजश्री यादव और सुनीता यादव। अगला कमेंट हमें भेजा है उन्नैल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल बागतारिया धाकड़, भोला बागतारिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक बागतारिया। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, उस्मानाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदीबा। ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। गांव फरांसी जिला हिसार से ये कमेंट हमें भेजा है राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने, साथ में है परिवार के सभी सदस्य। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी, जाहिद अली सैफी और आबाद खान। इसी गीत को सुना चाहे ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव और बाबू गौरी, हसन सिक्का ने। फिल्म हिना के इसी गीत को सुनना चाहा है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान ने। मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर व परिवार के सभी सदस्य। बीरपुर पोस्ट बिलसर तहसील अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश से विपिन कुमार शाक्य, सपना शाक्य, रविंद्र शाक्य, राजेश, रमेश चंद्र शाक्य, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, कुमारी सुजाता, कुमारी संगमित्रा, कुमारी प्रज्ञा, कुमारी प्रतिज्ञा, इनके मम्मी पापा व समस्त शाक्य परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है गंगा सिंह रावत और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म हिना का ये गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: स्वादिष्ट 4 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे फिल्म अनोखी अदा का गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन में, और इस गीत को सुनने के लिए फेसबुक पेज पे कमेंट किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, और आज हमारे इन श्रोता का जन्मदिन भी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सुनते रहें 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम का। अगला कमेंट हमें भेजा है जलालाबाद वेस्ट से, लिखने वाले हैं सुरेश गंगनेजा, और इनके साथ में है पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। इसी गीत को सुनना चाहा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, उनके परिवार के सभी सदस्य। नाज रेडियो क्लब करेली से ये कमेंट हमें किया है निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, इनकी बेटी नुसरत फातिमा अब्रार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, और साथ में है तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। गांव लहोडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, साथ हैं नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी। इसी गीत को सुनने के लिए कमेंट किया है नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहाने, और इनके साथ में है हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहाने और परिवार के सभी सदस्य। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, मित्रगण और परिवारजन। नवाजुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हमाद, पता है रामपुर लिसनर क्लब, नालापार बाग, छोटे साहब रामपुर से। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से, लिखने वाले हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और परिवार के सभी सदस्य। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर, वीना बंडलकर और विविधा। फिल्म अनोखी अदा के इसी गीत को सुनना चाहा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत ने। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष और साथ में है अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान बैंक सेंटर के पास चनहिटी बरेली कैंट से। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और परिवार के सभी सदस्य। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। राज कमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालाना मराठावाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन। धोतरजोड़ा आष्टी से दशरथ सागुप्ते और अनुष्का सागुप्ते। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से ये कमेंट है प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू का। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सालदा रानी और हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्ठा बजाज। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से ये कमेंट है पुरुषोत्तम सिंह और उषा सिंह, साथ में है ऋषभ सिंह। शाहजी नगर देंगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से ये कमेंट हमें भेजा है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने। मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मसूरी, कमरुन्निशा, साबिस्ता मोहम्मद, नसीबन पलक, लुबना और यश मसूरी। शेरवानी स्कूल गंजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ता

आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती और साथ में है बेताब लिसनर रेडियो क्लब बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजबान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है गावांडी वाला फजिल का पंजाब से ओम बगाड़िया, क्रियांश बगाड़िया, योगेश बगाड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगाड़िया ने। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आपके फेसबुक कमेंट्स पर आधारित। और आइए आप आगे चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ। फिल्म का नाम है सड़क, आवाज है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, बोल है समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है। आकोट से विनय बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डोबेराव। और कार्यक्रम का अगला कमेंट हमें किया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू करण, राहुल साहू, चंपा साहू ने। इसी गीत को सुना चाहे लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा और साथ हैं युवन और आरके राजा। MLB रोड ग्वालियर से इसी गीत को सुनना चाहा है सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लाव्या, आरव खुराना और SK पप्पी ने। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें भेजा है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर ने। पता है 14/12 नवापारा अभ्यारण्य, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। ग्राम रसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, साथ में है तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और परिवार के सभी सदस्य। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मरोतराव पांचाल और परिवार के सभी सदस्य। ठांडी नादूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुना चाहा है कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री और नूरू मीना ने। साथ में है इरफान मीना, कासिफ मीना। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। मालवा रेडियो श्रोता संघ आलो जिला रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर कृपाल सिंह, पूजा परिहार, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, नरेंद्र और समस्त परिहार परिवार और साथी श्रोता। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें भेजा है जवाहर नगर दुर्ग से RC कामड़े, करुणा, मीना, आश्विन और विपुल कामड़े ने। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीजा प्रवीण। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवड़ भाबिस्टे, अनीता और राहुल। इसी गीत को सुनना चाहा है हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र, ऋषि और राहुल ने। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से ये कमेंट हमें भेजा है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा का, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से आपका रेडियो दोस्त अरुण कुमार मालवीय दर्द और परिवार के सभी सदस्य। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। अगला कमेंट हमें भेजा है अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैग लाइन, बरेली से बेचलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित और राज। साथ में है महावीर कश्यप, रमेश चंद सैनी और गौतम राम ने। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब और इनके साथ में है मोहम्मद समीर, मोहम्मद वारिस, अलशिफा परवीन और परिवार के सभी सदस्य। गली सिक्कापुर बरेली मौर्य मंदिर से ये कमेंट हमें भेजा है रतनमाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा, गौरव मौर्य और चंद्र प्रकाश मौर्य। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ उत्तर प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, साथ में है तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम कुमार, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है जिला पटियाला पंजाब से नाभा, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी और साथ में है गुरमंत कौर, मनु और परिवार के सभी सदस्य। कस्बा उगैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार और इनके साथ में है प्रशांत, कार्तिक और निर्भय गुप्ता। शनि बाजार कस्बा उगैती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, प्रियाल और कायरव गुप्ता। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान और फैजान। सदर बाजार कुरावली से ये कमेंट हमें भेजा है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत और सोनम वर्मा ने। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से ये कमेंट है उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आयु, आरुष, शौर्य और दिनेश का। इसी गीत को सुनना चाहा है जमुना प्रसाद जी ने, इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। मदार चौक ग्राम उदयपुर बानोजान जिला बरेली उत्तर प्रदेश से नाजिम अली, अहमद अली, गुड्डू अली, मोहम्मद अली, गालिब अली, गालिब अंसारी, हाशिम अंसारी, बेटियां अदीबा और फातिमा, हुसैन अली, इजा फातिमा। गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और परिवार के सभी सदस्य। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडांदे और इनके साथ में है अर्चना ताई, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। गनगोला दातागंज से इशरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, साबरीन, शाहबाज, सैफ खान, ईशान, आजम और अरहान खान। अगला कमेंट हमें भेजा है आरवी सिंह, अरिजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, दीक्षा यादव ने थाने के सामने अल्लाहगंज जनपद शाहजहानपुर से। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल व मनु। इसी गीत को सुनना चाहा है, गीत अभी आपको हम बताएंगे, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से ये कमेंट है चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर का, साथ में है जयपाल यादव। अगला कमेंट हमें भेजा है मां बमलेश्वरी धाम साकरा सोमानी से जिला सोमानी जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू और इनके साथ में है देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय साहू और रुद्रांश प्रताप साहू। जूनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुजीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, सुनील, रिजीवन, नीलकंठ, चंद्रहास, हीरेंद्र, संजीवन और त्रिलोक साहू। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमार

कंडे और इनके साथ में है संजय और बेबी किट्टू। बीड शहर महाराष्ट्र से पोपटराव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रमथेश और रेडियो सुनने वाले इनके सभी श्रोता, इन्होंने नाम मेंशन किया है। गुजरात धाम गुजरात गांधी ग्राम से ये कमेंट हमें भेजा है प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीप सोनी ने। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म कन्यादान का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, बोल है नीरज के, संगीत है शंकर जयकृष्ण का।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। और अगला जो गीत जिसको आप सभी ने सुनना चाहा है वो है फिल्म दिल है तुम्हारा से। आवाज है अल्पे अग्नि की और साथ दिया है उदित नारायण ने, बोल है समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम पीपर लोड संगर गांव छत्तीसगढ़ से दीपेश कुमार, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोद पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान सौरभ, शायना शर्मा और मैंडी शर्मा ने। लेवाई छत्तीसगढ़ से ये कमेंट है गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना व परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है ग्राम चादुर बिस्वा जिला बुढ़ाड़ा और महाराष्ट्र से ये कमेंट है किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल, ग्राम राजू, तहसील मुताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम मझुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया और शानूर, फलकनूर, ताज और मोहम्मद अबान नूर, गुप्ता जी व परिवार के सभी सदस्य। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से इसी गीत को सुनना चाहा है। अड़ार नादघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, इनके साथ में है चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, सर्वेश कश्यप, अभय मीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश से आजम कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित और प्यारी कोको रानी। गाड़गे नतर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, साथ में है कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे। इसी गीत को सुनना चाहा है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता, कृषिव सिंह और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह ने। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग और साथ में है टोनी दीवान, लव दीवान, राधे ढींगरा और परिवार के सभी सदस्य। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर, साथ में है परिवार के सभी सदस्य। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया बिहार से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निबाता जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। विलेज खोखरावाली से विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास, रोशनी बरासा और शगुन बरासा। बीर शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पीवी कुलथे। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से ये कमेंट हमें भेजा है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। मालवा रेडियो श्रोता संघ से प्रमिलागंज आलोद जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शुभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। वेड़ी से मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर और सुनीता करमरकर। राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल, भारती बघेल, इनका पता है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोदपुरी।

राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल, भारती बघेल, इनका पता है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या भाई, सुच्चा सिंह पाठक और विनोदपुरी, गिसु दलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे और इनका पता है राजपुर मध्य प्रदेश से, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार

और श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। जी हाँ, यानी आपकी पसंद के अंतिम गीत का। और ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फर्ज से, आवाज है मोहम्मद रफी की। सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने 164 सिविल लाइंस बरेली से देवेंद्र रावत, इंदिरा रावत, सुनील रावत और साथ में है प्रियदर्शनी रावत, और इन्होंने ये गीत अपने

जिया आहिल अरहान परिवार के सभी सदस्य पटियाली रोड गंज डंडवारी से इसी गीत को सुना चाहे बटिंड खेड़ा से बटिंड खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा ने कुर्जा यूपी से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन और अंकुश अरोड़ा इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट है ग्राम धुर्राबाद बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन और युवराज साहू का परमड़ी रेडियो श्रोता संघ से ये कमेंट हमें गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से ये कमेंट भेजा है बबलेश पवार।

जिया आहिल अरहान परिवार के सभी सदस्य पटियाली रोड गंज डंडवारी से इसी गीत को सुना चाहे बटिंड खेड़ा से बटिंड खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा ने कुर्जा यूपी से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन और अंकुश अरोड़ा इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट है ग्राम धुर्राबाद बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन और युवराज साहू का परमड़ी रेडियो श्रोता संघ से ये कमेंट हमें गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से ये कमेंट भेजा है बबलेश पवार डी से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित और तानिया नारंग मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन संयम जैन मुस्कान मास्टर जीवीएम जैन सरधना मेरठ से आदि अंश और भव्य जैन जैन मंदिर वली गली कोराबली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरीन आशना और मोहम्मद कैफ अंसारी तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत

और कोई। ऑफिस जा रहे हों या फिर किसी और काम से जा रहे हों, क्योंकि रास्ता जो वो चौपला पुल से होकर जाते थे, अब उनको दूसरे रास्तों से घूम कर जाना पड़ रहा था। लेकिन अब

0: इस पुल पर कार्य 10 दिन पहले ही कंप्लीट कराया गया। और खास तौर पर अगर बात करें हम जो मणिनाथ या फिर बदायूं रोड, सुभाष नगर पुल या रामगंगा तिराहा वाले और लाल फाटक से निकलने वाले जो लोग थे वो खास तौर पर इस चौपुला पुल से होकर जाते थे, उनको खासी दिक्कत हो रही थी इसमें, और खास तौर पर स्कूल जाने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को। लेकिन अब दिक्कत खत्म। अब जो पहले आप 10 मिनट में ट्रेवल करते थे अपने शहर से एक जगह से दूसरी जगह पे, अब फिर से आप उसी स्पीड से जा सकते हैं। शहर की लाइफलाइन इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इसके बारे में उनके विचार भी हैं। तो कुछ श्रोताओं से हमने बातचीत की कि आखिर उनको क्या कैसा लगा जब दोबारा से वो इस पुल पर आए। तो आइए सुनाते हैं आपको ये बातचीत।
1: हेलो नमस्कार, मैं रमेश चंद वर्मा मणिनाथ शांति बिहार बरेली का निवासी हूँ। आज मुझे ही नहीं बल्कि सारे क्षेत्रवासियों को बड़े खुशी हो रहा लग रहा है सबको कि आज शांति विहार, गणेश नगर, मणिनाथ, सुभाष नगर जो भी इस रास्ते से जो निकला करते थे चौपला का पुल की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, आज समथिंग 40 दिन बाद चालू फिर से हो गया है। पुलिस प्रशासन व नगर निगम व जो भी इस विभाग में सभी लोग जो जुड़े होंगे इसमें, उन सबका सहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि परेशानियां तो खैर होती हैं सर, हर किसी के लिए होती हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने बहुत बहुत बहुत सख्ती से ड्यूटी दी, चाहे गणेश नगर वाला मोड़ हो, स्वास्थ्य वाला मोड़ हो, अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ चेक पॉइंट बनाए थे। तो माननीय हमारे जिला अधिकारी बरेली के मुखिया डीएम साहब के लिए दिल से धन्यवाद।
0: तो देखा आपने किस तरह से लोग थैंकफुल हैं, लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि फाइनली ये पुल बना और लोगों को हो रही प्रॉब्लम्स का काफी हद तक सॉल्यूशन मिला। आइए एक और श्रोता है हमारे, जिनसे हमने बात की, उनके विचार भी जान लेते हैं।
2: मैं मनीका चौहान है, मैं बरेली बदायूं रोड मणिनाथ का निवासी हूँ। पुलिस लाइन कैंटीन में जॉब करता हूँ जो कि चौपले पे हमारी है। तो मेरे चौपले पे जाने का रास्ता एक ही था जो कि है बदायूं चौपला पुल। तो पुल पे जाने के कारण काफ़ी समय की बचत होती थी, लेकिन क्या था अभी कुछ समय के लिए पुल बंद कर दिया गया था, पुल पे कुछ काम चल रहा था। लेकिन क्या हुआ इसके लिए हमारे लिए जाना पड़ता था मणिनाथ से सिटी होते हुए या फिर सुभाष नगर से, जो कि काफ़ी लंबा और ट्रैफिक भरा रास्ता हुआ करता था। लेकिन जाने के लिए हमें जल्दी जाना पड़ता था, जल्दी जाने के साथ साथ काफ़ी जाम मिला करता था, हमारे लिए परेशान होते थे, धूप में रुकना पड़ता था। लेकिन अब प्रशासन ने उस राहत देने के लिए जो पुल का मरम्मत का बहुत जल्दी कर दिया। अब पुल का काम पूरा होने के बाद हमारा समय कम लगता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब साथ में हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। इस प्रशासन से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, पब्लिक को काफ़ी राहत मिल गई है।

दोस्तों भाई, आप भी अब अपने परिवार के साथ चौपला जो पुल है उस पे जाके अपनी मंगलमय यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत कम समय में डिस्टेंस को जहाँ पर भी आपको जाना है आप अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम झुमका गिरारी से अमृता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं एफएम रेनबो के कार्यक्रमों से।
1: तो उनकी बात बस मतलब की सुनिए, बिना मतलब की उनसे कोई बात मत करिए, ना उनकी बात बिना मतलब वाली कोई सुनिए, यही एक मूल मंत्र है। तो बस इसी नोट पर आगाज करेंगे प्रोग्राम का हम बेहतरीन से ट्रैक के साथ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद बेहतरीन सा ट्रैक आप सबका इंतजार कर रहा है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

हेल्दी, फिट एंड फाइन होती है। और ये जो कहावत है ना, ये बिल्कुल सत्य भी है। अगर आप थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना एप्ट है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए तमाम तरीके के एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों ने योग को भी एज अ फुल फ्लेज डेली रूटीन में अपने शामिल कर लिया है। काफ़ी सारे फायदे होते हैं योग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अपनी लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे फायदे आपको दिखाई देने लगते हैं, और बहुत ही कम टाइम में। कई बार ऐसा होता है अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो उसके जो आपको जो उसके फायदे हैं वो कुछ दिन के बाद नजर आएंगे, लेकिन योगा आप जिस दिन से स्टार्ट करते हैं ना, उसी दिन से आप एकदम एनर्जेटिक और बिल्कुल पॉजिटिव फील करने लगते हैं। आपके जहन में एक संतुलन डेवलप हो जाता है। तो खैर, योगा की तो बहुत सारी हमने तारीफें कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं कि आप चाहे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप अभी योग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो घर पर योग के लिए एक डेडिकेटेड स्थान होने में काफ़ी सारे फायदे होते हैं। ये अगर आपके पास एक डेडिकेटेड प्लेस होती है ना, तो ये सुनिश्चित हो सकता है कि आप अपने अभ्यास में, आप अपनी प्रैक्टिस से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको मतलब कई लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उनके मन में एक परसेप्शन है कि भाई बहुत बड़ा सा एक योग स्टूडियो होना चाहिए या बड़ा सा एक डेडिकेटेड रूम होना चाहिए। लेकिन आपको हम एक बात बताएं ना, घर में ही एक आरामदायक योग स्पेस बनाना बहुत आसान है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, अपने योग स्पेस की योजना आप कैसे बना सकते हैं और कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल सिंपल आपके घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ। देखिए भाई, हर किसी के पास योग स्टूडियो हो या पूरा एक डेडिकेटेड कमरा हो, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल ठीक भी नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में एक शांत कमरा चुनें। कोशिश करिए कि रसोई और बैठक, जी हाँ, जो आपका किचन है और लिविंग एरिया, उससे थोड़ा सा दूर हो, और उससे उसी जगह को, उस डेडिकेटेड जगह को अपना योग सेंटर बना लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो कमरे में ही कोई ऐसी जगह बना लें जहाँ आप आराम से योगा कर सकें। अगर आपके पास योगा के लिए पूरा कमरा है भी, तो भी उसे आप मल्टीपर्पज़ बना सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई, दिन भर में होते हैं 24 घंटे, और एक इंसान नॉर्मली योग प्रैक्टिस करता है 1 घंटा, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाता है। कुछ लोग करते हैं तो कुछ और घंटे आप जोड़ लीजिए इसमें बस, लेकिन फिर भी तकरीबन 20 से 22 घंटे आपका वो कमरा वेकेंट रहेगा। तो आप उस कमरे को मल्टीपर्पज़ बना सकते हैं, किसी और, जब आप योग ना कर रहे हो तो किसी और काम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। घर में एक आरामदायक योग स्पेस बनाने का तरीका बुनियादी बातों से शुरू होता है। सबसे पहले आपको ये पक्का करना होगा कि आपका कमरा सही उपकरणों से सुसज्जित है और आपके पास ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं। और आपको बताया, अब आप जब मैंने जैसे ही कहा होगा ना कि भाई सही उपकरणों से सुसज्जित करें, तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि बहुत सारा खर्चा आएगा, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, बहुत सारे पेन्स लगेंगे मार्केट से जाके सामान लाने में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, योग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसका जो स्टार्टिंग है, इसको, इसकी जो शुरुआत है, इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं होती। एक शांत जगह, कम से कम सामान और सही मन, यही वो कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी फायदा होता है आपको, योग प्रैक्टिस में। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे, लेकिन एक छोटे से, बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

बारह बजकर 17 मिनट का वक्त हो गया और बेहतरीन ट्रैक आपने फिल्म सिटी लाइट से एंजॉय किया 100.7 FM रेनबो पर। अच्छा, एक इसी बात पे एक मतलब ऐसे ही बस क्योंकि टॉपिक पर डिस्कशन करना था तो एक फ्रेज़ याद आ गया कि हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। जी हाँ, एक बेहतरीन जहन उसी इंसान के शरीर में होता है जो जिसकी बॉडी एकदम

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:34 का वक्त, और अगर आप खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है आपके लिए। और खुद को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए कई सारे माध्यम अवेलेबल हैं, उसमें से एक माध्यम है योग भी। तो योगा करने के लिए कई बार हम योग सेंटर्स पे खुद को एनरोल कराते हैं, फिर क्या होता है टाइम की कमी के चलते हम उन सेंटर्स पे पहुंच नहीं पाते हैं। फिर 4-5 दिन तो बड़ा रिगरसली और रिलीजियसली जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बेहतर होता है कि हम अपने घर के कम्फर्ट में अपने टाइम को मैनेज करते हुए, कई लोग घर में भी कर लेते हैं, घर के अंदर भी करते हैं और घर के बाहर जो गार्डन एरिया होता है उसको भी यूटिलाइज करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि घर के अंदर आपका वातावरण कैसा होना चाहिए, प्लस आप किन बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ योग प्रैक्टिस को अंजाम दे सकते हैं। तो इस मतलब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक अच्छी मैट चुनना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी प्रैक्टिस का आधार है एक अच्छी मैट, और रियलिटी में आपकी आपके बॉडी के अलावा यही एकमात्र ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक मोटी टिकाऊ मैट चुनें जिसमें फिसलन, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक मोटी टिकाऊ मैट चुनें जिसमें फिसलन रोधी उत्कृष्ट पकड़ हो। जी हाँ, एक मजबूत होनी चाहिए। इस तरीके की मैट्स बहुत इजीली, योगा मैट्स बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसमें स्लिप स्लिप नहीं करती हैं वो आसानी से। उसके बाद पट्टा एक बेहतरीन इक्विपमेंट है जो लचीलेपन में सहायता करता है और अधिक खिंचाव प्रदान करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। योग अभ्यास के लिए कई लोग ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और मानते हैं कि भाई ब्लॉक्स ज़रूरी एक इक्विपमेंट है, इनसे आसन अधिक स्थिर और संतुलित महसूस होते हैं। सही मुद्रा को समझने और प्राप्त करने में भी ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो किताबें, ढेर सारी किताबें एक जगह पे अक्यूमुलेट कर लें, वो भी काम आ जाती हैं। इसके अलावा तकिया, जी हाँ तकिया, ये जो एक तकिया है ना, इसके अनगिनत फायदे हैं। तकिया आसन को आरामदायक बना सकता है, हृदय को खोल सकता है, पीठ के निचले हिस्से को सहारा दे सकता है और शरीर को खोलने तथा गहरी मुद्रा प्राप्त करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो ये तो कुछ इक्विपमेंट्स हो गए जो आपको इजीली घर में ही अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपके घर के अंदर जैसे मैंने भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा शांत एरिया हो जहाँ पे लोग आते जाते ना हो, या फिर अगर दिन भर आना जाना लोगों का लगा रहता है तो कोई ऐसा टाइम स्लॉट चुनिए जब रिलैक्स्ड रहें आप।

1.5 घंटा बिल्कुल माइंड से रिलैक्स जो है, अपना फ़ोन बिल्कुल साइड में रख दिए। देखिए फ़ोन या डिजिटली आप जितना ज़रूरत हो उतना ही खुद को कनेक्टेड रहिए, रखिए डिजिटल वर्ल्ड से, बाकी टाइम बिल्कुल खुद को रिलैक्स रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड करता है, साथ ही साथ आपकी जो रेगुलर रूटीन वर्क है उससे डिविएट करता है। तो ये तो कुछ घर के जो इंटीरियर्स हैं उनकी हमने बात कर ली। अगर अब हम बात करना चाहते हैं कि भाई घर के बाहर आपके बगीचे में किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, कैसे आप पेड़ पौधे लगाए हों, या किस तरीके की घास हो, कैसी जगह हो, इसके बारे में भी हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे और उसके बाद वो सारी बातें आपसे ज़रूर करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

ये सूदिंग ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 एफएम रेनबो पर. 12:49 का वक्त हो गया है और आपको बता दूं कि भाई घर के बाहर बगीचे में योग करने का जो एनवायरनमेंट है ना, वो थोड़ा सा शांत, हवादार और प्राकृतिक होना बहुत ज़रूरी है. प्राणायाम और ध्यान के लिए आपका जो वातावरण है ना, वो प्रदूषण मुक्त होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए कहा जाता है कि सुबह सूर्योदय से पहले का जो वक्त होता है वो सबसे अच्छा रहता है. बगीचे में योग स्थान का वातावरण बनाते वक्त कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जगह एकांत और शांति से भरी हुई हो. साथ ही साथ वातावरण में शोरगुल, जैसे गाड़ियों की आवाज़ें या बहुत शोर शराबा है, वो कम होना चाहिए. एकाग्रता बनाए रखने के लिए एक शांत कोना चुन लीजिए. एक और इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि समतल यानी फ्लैट और साफ ज़मीन चुनना सुनिश्चित करें. क्योंकि देखिए, अगर आप बैठने के लिए बिल्कुल फ्लैट ज़मीन चुनेंगे तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अनकंफर्टेबल हुए, आप योग मैट बिछा सकते हैं. साथ ही साथ इस चीज़ का अश्योरेंस ले लीजिए कि ज़मीन पर किसी तरीके के कंकड़, पत्थर, कीड़े मकोड़े ना हो. पेड़ों की छाँव सबसे एप्ट होती है. लेकिन अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपके घर में बहुत बड़ा सा पेड़ लगा हो. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके गार्डन में कुछ लताएं हैं और उससे आपने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है कि थोड़ा सा शेडेड एरिया है, थोड़ी छांव रहती है, तो उसके नीचे बैठ करके आप इत्मीनान से योग करिए. बिल्कुल आइडियल जगह होती है वो. बगीचे के ऐसे हिस्से का आप सिलेक्शन करिए जहाँ आसपास के लोगों, स्पेशली आपके जो पड़ोसी हैं, उनकी आवाजाही थोड़ी सी कम हो, जिसे आप बिना किसी झिझक के प्रैक्टिस कर सकते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो ये है कि जो नेचुरल स्मेल होती है ना, और फॉर एग्जांपल एक अलग सी खुशबू होती है. अगर आपके आसपास पौधे लगे होंगे और उन पौधों में अगर आप लैवेंडर और चमेली जैसे खुशबूदार पौधे लगा लें, और वो जो हरी घास होती है उसकी जो महक होती है बहुत ही खुशनुमा बनाए रखती है आपके पूरे उस एक घंटे के टेन्योर को. इसके अलावा बैम्बू के पत्तों की सरसराहट एक प्राकृतिक संगीत का अनुभव देती है. तो ये सब देखिए कुछ बेसिक्स हैं. जो लोग गार्डनिंग के शौकीन है ना, उनके यहाँ ये सब चीज़ें मुझे मिलती हैं, मैं देखती हूँ इस चीज़ को. इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सके तो एक छोटा सा वाटर फाउंटेन लगाएं. और आजकल तो वाटर फाउंटेन बनाना इतना ईजी हो गया है. डिजिटली आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट को बुलाएं, और आप इस चीज़ को घर बैठे बड़े आराम से बना सकते हैं. घर पे मौजूद जो पुराने

चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, आप रीयूज़ रिड्यूस रिसाइकिल वाला जो प्रोसेस है वो अपना करके एक छोटा सा वाटर फाउंटेन बना लीजिए, और उसमें उससे जो बहते हुए पानी की धीरे धीरे आवाज़ आएगी ना, वो मन को बहुत ही गहरा सुकून देती है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जो हमने कवर कर लिए हैं, और आपके घर के इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स दोनों का इस्तेमाल करके, दोनों जगह के एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतरीन सेटअप तैयार कर सकते हैं योग करने के लिए। और जितनी बेहतरीन आप जितना बेहतरीन आपका सेटअप होगा उतना ज़्यादा आपका मन लगेगा, और जितना ज़्यादा मन लगेगा उतना ज़्यादा आप सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो पाएंगे। तो फिलहाल बस इसी नोट पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे इस प्रोग्राम को, इस वादे के साथ कि एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत में सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं अमृता और एक बार फिर से शुरू करते हैं गीतों भरा ये सफर। साथ में है आपके भेजे हुए ढेर सारे पत्र और आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का ये पहला पत्र हमें भेजा है छावनी अशरफ खां, पानी टंकी के पास होली चौक बरेली यूपी से। लिखने वाले हैं रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय, फजलुद्दीन भाई। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है, गीत आगे बताएंगे आपको। ये पत्र है ग्राम परधौली से ज्ञान सिंह और सौरभ वीरपुर बरेली से, वीरेंद्र कुमार लौंगपुर से, बरेली जंक्शन से। ये पत्र हमें भेजा है भाई गरीब भाई नासिर भाई सादिक, विक्की भारद्वाज, पद्म भारद्वाज, इनके साथ में है वीरेंद्र सिंह चौहान, सोनू मिश्रा और प्रदीप पाल नमन। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम नूरजहां, डब्लू अक्रम नूरजहां, वली अक्रम नूरजहां, वली उल्लाह उल्लाह अक्रम नूरजहां। राजनंदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान। जेल रोड रायगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर उर्फ राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गुहाड़कर। बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमीन और कुमारी ध्वनि उर्फ परी। मोहल्ला तलैया और लाजागीर

से ये पत्र हमें भेजा है फजलुद्दीन भाई, अब्रार भाई, अफजाल भाई, रामप्रसाद शर्मा, गैगटा काशी, धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सिद्दीकी अली, साबिया, रामप्रसाद शर्मा, धूनेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, फजलुद्दीन भाई, अब्रार और अफजाल। मोहल्ला हलवाईन शेरकोट बिजनौर, जिला बिजनौर से ये पत्र है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। तो आइए आप सबके अनुरोध पर आपको सुनवाते हैं फिल्म ये दिल आशिकाना का गीत। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल हैं संगीत है समीर का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है परदेस, आवाज है सोनू निगम और हेमा सरदेसाई की। इस गीत को सुनने के लिए अनुरोध किया है आप सभी श्रोताओं ने। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से सत्येंद्र सिंह, आदित्य गौतम, समीर गुप्ता, मंटू श्री कृष्ण और छोटे सिंह। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश से विमल वर्मा, इनके मम्मी पापा व परिवार के सभी सदस्य। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना, बरेली उत्तर प्रदेश से बनीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी, रचना भारती, एकता, कुमारी दिव्या, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। फिल्म परदेश के इसी गीत को सुना चाहा है एडवोकेट वारिस अली खान ने। साथ में हैं शहबाज खान, शकील अहमद, डॉक्टर सलीम अहमद। इनका पता है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। ककराला बदायूं से ये पत्र भेजा है मशहूर खान। मोहम्मद सरफराज खान उर्फ बबलू, विकास सक्सेना, कर्मवीर गोसवाल, प्रवीण रावत, अनिल लागर, सागर बख्शी और समस्त परिवार के लोग। आइए चलते हैं अगले पत्र की ओर। ये पत्र है यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। साथ में हैं जीतेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। सरगुजा मैनपाट से ये पत्र है सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और अदीबा थापा का। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। फिल्म परदेस के इसी गीत को सुनने के लिए अगला अनुरोध हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्ठा बजाज और साहिल ने। चंडीगढ़ से ये पत्र है सतीश अनेजा, विमला अनेजा व परिवार के सभी सदस्यों का। बटिंडा रोड डावली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। परी महल कासगंज से ये पत्र हमें भेजा है आबाद खान, गजारा खान, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी और गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। तो आइए आप सबको सुनाते हैं आपके अनुरोध पर ये गीत।

0: छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। अगला गीत जिसको आप सभी ने सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है बाजीगर, आवाज है अनु मलिक और कुमार सानू की, बोल है देव कोहली के, संगीत है अनु मलिक का। सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीमा अली और जुनेद अब्बासी। इसी गीत को सुनने के लिए पत्र भेजा है वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया और शोएब खान। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। ये पत्र है जसपुर उत्तराखंड से, लिखने वाले हैं रियाज हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर बरेली से फजरुद्दीन भाई, अफजाल, मल्लू, शबीना, रामू, प्रजापति, धर्मपुर, बरेली से ही फहीम खान सिद्दीकी, अली, अज्जू और साबिया। पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुब, साथ में है महरून निशा। कटा चांखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से ये पत्र भेजा है अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील मौर्य, खुशबू, अरोही और स्वाति मौर्य। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, आरू साहू और थनक्ष ने। इस गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमारे पास पहुंचा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सिद्दीकी अली, साथ में है साबिया, रामप्रसाद शर्मा, दूने नगर से मुन्ना सिंह कठेरिया और इनके साथ ही। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम और असद बाबू। परी महल कासगंज से यह पत्र हमें भेजा है आबाद खान, नबील खान, अरफा खान, इल्मा खान और परिवार के सभी सदस्यों ने। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जग्गी दुआ, जगमोहन प्रजापति, सुनीता शर्मा और सुनीता जैन। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म बाजीगर का ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ।

100.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जिसको आप सभी ने सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है

खिलाड़ी तू अनाड़ी, आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल है हसरत जयपुरी के, संगीत है अनु मलिक का। सुनना चाहे आप सभी ने प्रमिलागंज आलोद जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, रामगंगा बरेली से ही राम प्रकाश सिंह और साथ में है विनय, रवि, अद्भुत, सुलोचना और नेहा सिंह। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नी लाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा और शिवान, साथ में है पृथक सिंह। इसी गीत को सुनना चाहे शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, साथ में है अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से ये पत्र भेजा है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। पश्चिम थोक गंजडुंडवारा से मुनव्वर लल्ला, नसरीन मिर्जा भी, अरबाज खान, शहबाज खान, बादाम किशमिश, सूफिया जहां, बीबी फातमा, गजाला फातमा, नरगिस बानो, कशिश बानो और रजिया शहजादी। आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित। कार्यक्रम का अगला गीत जिसको सुनने के लिए आप सभी ने अनुरोध किया है, फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा, आवाज है श्रेया घोषाल और शान की, बोल है समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने बक्सर बिहार से शराफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी डुमराव बिहार से, डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और परिवार के सभी सदस्यों ने, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, भोपका भाटापारा से भेपेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, आदर्श नगर मलोद पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। ये पत्र हमें भेजा है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी ने। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं तहसील दातागंज से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज, अमन यादव, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता यादव, सूरजश्री यादव और प्रीति यादव। जिला बदायूं ग्राम दूनेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेनू, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये गीत।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। आवाज है लता मंगेशकर और कुमार सानू की, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत है अनु मलिक का। इस गीत को सुनने के लिए पत्र भेजा है जातो का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से ये पत्र है, हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण का। इसी गीत को सुना चाहा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां ने, मोहल्ला गड़ैया बरेली से मोहम्मद कैशर शमसी, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सलीम शमसी, मोहम्मद नवेद, रजिया शमसी, बेबी और परिवार के सभी सदस्य। अली का डाबली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। फिल्म जब प्यार किसी से होता है के गीत को सुना चाहा है औरंगाबाद से ही राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश और राजदीप राजेश, साथ में है राशि राजेश। इसी गीत को सुनना चाहा है बाबू दीन ने मेरठ कैंट से, साथ में है परिवार के सभी सदस्य। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीजा प्रवीण। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमारे पास भेजा है जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दीवेंद्र प्रताप साहू और साथ में है नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप व परिवार के सभी सदस्य। कार्यक्रम का अगला पत्र हमें भेजा है सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, लिखने वाले हैं अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत 100.4 एफएम पर, और अब समय हो चला है आज के कार्यक्रम अनुरोध गीत के अंतिम गीत का। फिल्म का नाम है घातक, आवाज है शंकर महादेवन और अलका याग्निक की, बोल है राहत इंदौरी के, संगीत है आरडी वर्मन का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, यह पत्र हमें भेजा है विलेज कुष्टा ओल्ड अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हगू ने, और इनके साथ में है योगिता, प्रियाली, पार्थ और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू शानू, बबन मुन्नू कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया ठाकुर। अगला पत्र हमें भेजा है चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, इनके साथ में है नव उदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान। मोताला बाजार से ये पत्र हमें भेजा है बबलू, और इनके साथ में है शेख शागिर, शेख वजीर, सोहिल, सैयद तहमूर, शामिर खान और अलजान। कार्यक्रम का अगला पत्र है वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशवी का, और इनके साथ में है सुषमा, परिधि, मायरा और परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारबन, और इनके साथ में है मीनाक्षी, प्लोमा और ईशानी। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मशहूर, साइना, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। शिवहरा जिला बिजनौर से आशिफ चौधरी, अराफत आदिब और कदीर चौधरी। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र है मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान और इनके साथ में है नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। फाजिलका पंजाब से यह पत्र भेजा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी और इनके साथ में है शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर फिल्म घातक का ये गीत।

कार्यक्रम अनुरोध गीत के अंतर्गत अभी आप इस गीत को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। दिन के 2 बजे हैं श्रोताओं, और इसी समय के साथ हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम रसरंग जो कि है गजल, कव्वाली और लोकगीतों का सुहाना सफर। तो कार्यक्रम की शुरुआत इस गजल से कर रहे हैं, पंकज उदास की आवाज में ये गजल है। लीजिए कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति।

0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

निकलो ना वे नकाब, जमाना खराब है। पंकज उदास की आवाज में इस खूबसूरत गजल से हमने आज के कार्यक्रम रसरंग का आगाज किया है और गीत और गजलों का ये सफर अभी यूं ही बना रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, अंतराल के बाद कव्वाली को लेकर फिर हाजिर होंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: तो लीजिए, इस छोटे से अंतराल के बाद कव्वाली, लोकगीत और गजलों के सफर को लेकर, यानी कि रसरंग कार्यक्रम को लेकर हम पुनः हाजिर हैं आपके पास। अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं जानी बाबू की आवाज में ये कव्वाली। वो एक भोली सी लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूं।
1: ये हकीकत में प्यार होता है और वो जिंदगी में फकत एक बार होता है। प्यार प्यार सबसे किया नहीं जाता और दिल हर एक को दिया नहीं जाता। चाके दामा तो सिल भी सकता है मगर जख्म दिल का सिया नहीं जाता।

रहा है। देखिए ये कई सालों से लोगों को मालूम है कि मैं किस लड़की से प्यार करता हूं। अगर बाजू में कोई नया फंसा हो तो प्लीज उसको बिल्कुल ना बताइएगा कि वो लड़की कौन है। सस्पेंस है।

कि जब पहली बार बाहर के दौरे पे प्रोग्राम के लिए गया था, 2 महीने प्रोग्राम करने थे, 1 महीना और बढ़ गया, तो वो लड़की अपने पत्र में, खत में, लेटर में क्या लिखती थी,

फूलों की डाली रे के बन्नी देखो फूल चुने। शमा जौहरी की आवाज़ में इस लोकगीत के बाद एक और लोकगीत पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: ऐश्वर्या द्विवेदी की आवाज में इसी कजरी लोकगीत के साथ आज का रसरंग कार्यक्रम यहीं तक। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आपको ले चलते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाजें लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
1: के। ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है। इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने। स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम दो दिल।

0: ज्ञान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे?
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे। और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की।
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में।
1: जी
0: और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई, तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहां का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना, तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल। और वो पूरा जो माहौल था ना, वो बचपन से उनको मिल गया था,
0: जी
1: और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका
1: जी
0: है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की ये जो परंपरागत शैली है, यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो।

0: पहली छात्रा
1: मतलब
0: थी
1: बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया
0: जी।
1: है। तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गांव से बहुत दूर था और गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई इतनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खास तौर पे ऐसा हुआ करता था। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया, और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना,
0: जी।
1: तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी और वो
0: और जुड़ी
1: आकाश
0: हुई नहीं, वो
1: जी
0: ए श्रेणी की
1: ए श्रेणी की कलाकार
0: जी।
1: थी। देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि
1: जी,
0: उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ
0: जी।
1: है।
0: और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश द्वारा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान
1: बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि
1: जी,
0: उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ
0: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश द्वारा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे। तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक

0: की जाएगी, तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना, तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, मंगा जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़कर
1: पढ़ना चाहिए
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं। इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
0: बिल्कुल। देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल.
0: सेल देख कर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु तो उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए. जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है. और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है. ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए.
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल.
0: सोच समझ कर ही
1: और
0: आपको करना
1: बहुत
0: है।
1: सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे,
0: जी
1: बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं. तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे इन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन. और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए.
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये दिन के 3:30 और 20 सेकंड हुए हैं। समय हुआ है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर

जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते, कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी
विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप

0: किन किन देशों से आते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं। आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है।
3: आज मैं आप सभी के सामने नशा मुक्त से उसकी सेहत खुश मेरे मन में एक भटकने लगा। लोगों को आप सभी अच्छी आदतों जैसे दूर रहेंगे और अब
4: आज कृषि गोष्ठी के अंत में मिले समय हमारे जो आंधी का
5: करवाएंगे
4: अभिधान
5: पीढ़ी को अच्छी खेत।
6: जरूरत जिनका तो की भूमि में डरवाओ किसान।

0: मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी? मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं,

0: बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है।

0: माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
1: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
2: जी मालिक।
3: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
2: हाथ से निकल गई।
3: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
3: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़े देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर।
1: एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

ये देश हमारा है। अपने देश की प्राचीनतम और पौराणिक धन संपदा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। देश की बगिया का सबसे महकता पुष्प हिंदी।

जल ही जीवन है, इसका संरक्षण करें, इसे व्यर्थ ना बहाएं। हमेशा याद रखें, जल का कोई विकल्प नहीं।

0: आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। और जरा अपने रूम की या आप जहाँ भी हैं वहाँ की घड़ी की ओर जरा नजर डालिए, या आपके हाथ में वॉच बनी है या फिर आपके जेब में आपका स्मार्टफोन है, तो समय मिला लीजिए, क्योंकि वही समय हो गया है 4 बजे का जब हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम के लिए हम आपकी फोन कॉल्स दिन में 2:30 से रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए फोन नंबर है 0581-2517-200। फेसबुक पर भी आप कमेंट्स के माध्यम से आज के विषय को लेकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। प्राय श्रोताओं, आपसे गुजारिश एक और करते हैं कि जिन श्रोताओं की फोन कॉल्स आज के कार्यक्रम में शामिल हुई है, वे कृपया हमसे एक सप्ताह के अंतराल के बाद दोबारा कॉल करें, दोबारा हमसे बात करें। अब देखते हैं कि पहले श्रोता कौन बने हैं आज के कार्यक्रम के। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, नाम बताइए।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं प्रेम कुमार सिसोदिया।
1: तो जी हाँ, प्रेम सिंह सिसोदिया।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसा है वहाँ का मौसम?
1: जी काफी अच्छा हो गया मौसम, यहाँ पे ठंडी हवाएं भी चल रही है, कल बारिश भी हुई थी हमारे यहाँ पर।
0: अच्छा
1: तो हाँ जी, लेकिन अभी प्री मानसून चल रहा है, मानसून तो 25 जनवरी के बाद ही हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और सभी जगह बरसात होगी, तो फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, वैसे यहाँ हम अगर अपने यूपी की बात करें तो बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और बारिश के तो अभी कुछ दिनों से तो कोई आसार ही नहीं लग रहे।
1: जी हाँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ का मौसम अच्छा है और उसकी ठंडक का एहसास हमें भी हो रहा है कुछ कुछ।
1: जी बिल्कुल, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है हमारे यहाँ पे, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा।
0: जी बिल्कुल, आपसे बात करके लग रहा है कि वहाँ के मौसम को हम इमेजिन कर रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा होगा ठंडी हवाओं में। फिलहाल हमें बताइए कि आपका वो कौन सा झूठ है जिसका आपने सहारा लेकर अपने काम से किनारा किया हो?
1: जी जैसे कि आपको बताऊं, झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ समस्या हो जाती है कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा विचार है कि सच्चाई का साथ देना चाहिए। झूठ से तो हमें ऐसा हो लगता है कि हाँ वहाँ पे किसी का कुछ भला हो रहा है, या हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, या फिर सामने वाला

0: गलत है और उसके लिए झूठ बोलेंगे हम तो फिर हम भी झूठ के श्रेणी में आ जाएंगे। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर सामने वाला सच्चा है और उसमें कुछ तकलीफ आ रही है और हमारे झूठ बोलने से अगर उसका कुछ ठीक हो रहा है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन हाँ, सामने वाला अगर सही हो और उसके लिए झूठ बोला जाए तो मैं मानता हूँ कि हमारे झूठ से किसी को फायदा हो। लेकिन मेरा तो ऐसा कहना है कि जहाँ तक हो सके हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर हमारे झूठ से किसी का लाभ होता है, किसी का फायदा होता है, तो कभी कभी झूठ अगर किसी के अच्छे के लिए बोला जाता है तो वो चल जाता है ना
0: जी। हाँ बिल्कुल,
1: लेकिन अपने काम के प्रति
0: तो उसके लिए हम झूठ बोल सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो काम है, उसके प्रति झूठ नहीं होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल। तो आज बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
0: झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो।
1: बिल्कुल, विषय से जुड़ा हुआ गीत आपका चयन आपने किया है, बहुत अच्छा चयन है, धन्यवाद।

0: तो श्रोताओ, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, क्यों ना कभी आपने हमने अपने जीवन में झूठ तो जरूर बोला है ना। तो जानते हैं हमारे जो श्रोता फोन लाइन पर अब हमारे साथ हैं, उन्होंने कौन सा झूठ बोला था जो उन्हें अब तक याद है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: किसी को नफरत है मुझसे, किसी को नफरत है मुझसे तो कोई प्यार कर बैठा। किसी को यकीन नहीं है मुझ पर तो कोई एतवार कर बैठा। कितनी अजीब है ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता तो कोई इंतजार कर बैठा।
0: विमल जी, संभवतया बोल रहे हैं वक्सीना दातागंज से।
1: जी बिल्कुल, आपका पुराना भाई सोता है ग्राम पोस्ट वक्सीना डिस्ट्रिक्ट बधाई होती। विमल ठाकुर और सिप्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी हमारा नमस्कार। बताइए विमल जी, वो कौन सा झूठ है जिसका सहारा लेकर अपने अपने काम से जो है आपने किनारा किया हो।
1: जी कभी कभी क्या होता है जब हम झूठ बोलते हैं, तो जैसे कि मान लीजिएगा अभी एक झूठ मैंने बोला था, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ फिलहाल ही, और उस झूठ से बोलने से मैंने कहा आज काम पर नहीं जाना, झूठ क्या बोलूं, तो मैंने ऐसे कह दिया कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और मैं उसके बाद गंगा स्नान करने मैं और मेरी फैमिली से सभी लोग चले गए।
0: अच्छा, और जबकि आप पूर्णतः स्वस्थ थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ थे, पर दिल कह रहा था आज ड्यूटी नहीं जाना, और ड्यूटी से बड़ा प्रेशर आता है कि ड्यूटी आना, तो मैंने कि ऐसा झूठ बोलूं जिससे हम लोग सभी लोग घूमने भी चलेंगे, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घूमने गए और बहुत अच्छा लगा उसको।
0: अच्छा, अगर वो झूठ पकड़ जाता तब क्या होता?
1: पकड़ जाता तो बहुत डांट होती है, क्योंकि काम की जो शुरुआत रहती है और काम करने का जो तरीका है वहाँ पर, मान लीजिएगा मैं काम कर रहा हूँ तो जो मुझे आता है वो और किसी को नहीं आता। हर एक इंसान में अलग अलग खूबियां होती है, तो इसी हिसाब से काम की वैल्यू के हिसाब से इंसान को चुना जाता है और उसे वही काम दिया जाता है।
0: तो जब इतने अच्छे काम के लिए, एक स्पेशल काम के लिए आपका ही चयन किया गया है, तब हमें लगता है आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था।
1: पर मैम क्या करूँ, उस समय हमारे काफी मतलब रिश्तेदार भी आई हुई थी और सभी लोग थे, तो उस समय घूमना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो रिलेशन वाले रिश्तेदार रहते हैं उनके साथ अगर घूमा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया।
0: चलिए।

0: तो ये झूठ आपको आज तक याद है, और बताइए गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मूवी का नाम रहेगा तुम मेरे हो, और इसमें आप कोई भी नगमा हमारे रेडियो सेट पर भेज दीजिएगा, और रेडियो के प्रोग्राम है बहुत अच्छे लगते हैं, और रेडियो से मैं सेल्फी लेके भी आकाशवाणी बरेली पे भेजूंगा कि मेरा भी एक पोस्ट लगाया जाए।
0: बिल्कुल, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपका गीत, और आपने

0: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम से आप इस समय जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। हमारा आज का विषय है कि आपका वो कौन सा झूठ है जिसका लेकर सहारा आपने अपने काम से किया हो किनारा। तो कौन सा झूठ अगले हमारे श्रोता हमसे साझा कर रहे हैं जानते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी।
3: जी बहना जी प्रणाम। नमस्कार।
2: नमस्कार। बड़े ही एक खुश मिजाज अंदाज हमारे इन श्रोता का है। अपना नाम बताएं।
3: जी बहना जी मैं राजू यादव ग्राम उपरेका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
2: बुंदेलखंड से हमारे ये श्रोता हमसे जुड़े हैं। राजू यादव जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी बहना जी
2: बताइए राजू जी कि आपका वो कौन सा झूठ है जिसका सहारा लेकर आपने अपने काम से किनारा किया हो।
3: बहना जी हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं कि हम कृषि कार्य में नहीं जाएंगे या अपने बगीचे में नहीं जाएंगे और घर पर लेते रहते हैं।
2: अच्छा नहीं तो क्या क्या झूठ बोलते हैं उसमें?
3: उसमें ये झूठ बोलते हैं कि आज लाइट नहीं है या मोटर खराब है इसलिए काम पर नहीं जाना।
2: जबकि मोटर और लाइट सबकी व्यवस्था व्यवस्थित होती है।
3: जी जी।
2: बढ़िया। तो कृषि कार्य करते हैं इस समय किस चीज को अपने बोया हुआ है खेतों में?
3: इस समय बहना जी हमने खेतों की गहरी जुताई कर दी गई है और एक जो गोबर खाद होती है उसको डाल दिया गया है। इसके बाद जैसे ही बारिश होती है तो 25 जून तक हमारे खेत में मूंगफली की बुवाई करते हैं बहना जी हम लोग।
2: अरे वाह। तो वहाँ अभी जैसे मौसम कुछ लग रहा है बारिश का?
3: बारिश तो अभी हो चुकी थी बहन 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए।
2: अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, खुशगवार मौसम हो रहा है। तो बताइए ऐसे मौसम में आज गीत कौन सा सुनेंगे?
3: मूवी का नाम रहेगा हातम ताई गीत।

0: सहारा लेकर हम उससे बचाव करते हैं। और क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम उसको ये बात नहीं कहेंगे तो मतलब वो काम कराने के बाद भी कभी कभी खराब बात कर रहा है, तो इसलिए ये झूठ बोलकर हमें इसका सहारा लेना पड़ता है।
1: अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है, आप ऐसा कर सही करते हैं?
0: जी मैम, देखिए वक्त और हालात कभी कभी ऐसे बना देते हैं कि इंसान को झूठ बोलने पर भी मतलब मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। पहले तो कहा था ये है कि किसी से झूठ ना बोलना चाहिए और झूठ बोलना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर झूठ बोलने से कहीं अगर हमारा फायदा हो रहा है या किसी और का फायदा हो रहा है तो थोड़ा झूठ बोलने में कोई बुराई भी नहीं है।
1: बिल्कुल, अगर झूठ बोलने से किसी दूसरे का फायदा होता है तब तो वो झूठ अच्छा है, किसी अच्छे के लिए अगर बोला गया है तो।
0: जी जी, अगर अच्छे के लिए झूठ बोलेगा तो ठीक है, लेकिन बिना वजह झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि झूठ का सहारा लेना भी जरूरी पड़ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो वो मतलब हमारा भी मतलब काम खराब हो जाएगा, इसलिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
0: जी आज गाना सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है बगावत, इसका एक गाना है नागन सा रूप है तेरा मैं बनके प्रेम सफेरा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये सुनना चाहूंगा।
1: बिल्कुल, हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: तो श्रोताओ, आपकी बात आकाशवाणी के साथ आप सुन रहे हैं और बड़ा ही रोचक सा विषय आज का हमारा है कि ऐसा कौन सा झूठ आपका है जिसका सहारा लेकर आपने अपने काम से किनारा किया हो। जानते हैं हमारे इन श्रोता की क्या राय है इस विषय को लेकर। हेलो।
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, नाम बताएं।
3: जी मैडम, मैं ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से तौफीक अहमद मंसूरी बात कर रहा हूं। मैडम
2: तौफीक अहमद मंसूरी, क्या करते हैं आप?
3: मैडम मैं सिलाई काम करता हूं।
2: सिलाई का काम करते हैं आप, रामपुर से हमसे जुड़े हैं।
3: जी जी जी।
2: तो हमारे कार्यक्रम सुनते हैं वहाँ से?
3: जी मैडम सुनते हैं, आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगता है?
3: सबसे अच्छा मैडम ये लगता है फाइनल कार्यक्रम आपका।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मंसूरी जी, हमें बताइए कि आपका कौन सा झूठ है जिसे लेकर आपने जो अपने काम से किनारा किया हो उसका सहारा लेकर।
3: जी मैडम, हमारा मैडम हम सिलाई काम ये करते थे, जिस टाइम सीखते थे काम, तो मैडम अपने घर वालों से झूठ बोलते थे कि हमारी आज तबीयत सही नहीं, काम पे नहीं जाएंगे मैडम।
2: अच्छा, चाहे तबीयत ठीक हो।
3: जी जी।
2: अच्छा, कभी घर वालों ने झूठ पकड़ा नहीं? पता चले अभी आप बीमारी का बहाना बना रहे हैं कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और थोड़ी देर में आप खेलने कूदने या बाहर निकल गए घूमने घामने, तो फिर घर वालों ने ऑप्शन किया होगा, ऑब्जेक्शन किया होगा कि अभी तो तबीयत खराब थी, अब ये घूम रहा है, झूठ पकड़ा गया हो कभी?
3: जी जी बिल्कुल पकड़ा गया मैडम, तो मैडम पकड़ा जाता था एक ना एक दिन।
2: फिर क्या हुआ
3: मैडम? आता रहा, फिर अगले को हमने जो है झूठ बोलना बंद कर दिया फिर।
2: अच्छा
3: जी,
2: बहुत अच्छी बात है, आपने झूठ बोलना फिर बंद कर दिया। तो आज कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे?
3: देखिए मैडम, जब आचोरा से मेरी आज काफी टाइम के बाद कॉल लगी है, तो मैडम फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां, और उसमें गाना है आज लड़ाया मैंने चली पुरवाई।
2: बिल्कुल, हम
3: मैडम अगर आपकी इजाजत हो, कुछ दोस्त अगर आपकी इजाजत हो तो।
2: हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए।
3: देखिए मैडम, हमारे बड़े भाई शफीक मंसूरी, छोटे भाई लेक मंसूरी, तरपल कुमार सैनी, शगावत मंसूरी, सरफराज मंसूरी और तमाम दोस्त मैडम लाल मोहम्मद अंसारी, खासतौर से मैं ये गाना सुनवाना चाहूंगा।
2: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

से पढ़ सकें। लेकिन आपसे गुजारिश भी करेंगे कि अगली बार आप जो है अपनी वर्तनी को थोड़ा और स्पष्ट लिखिएगा। प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, शिप्रा जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बरेली से हैं आप, आपके साथ हैं पिंकी, रिंकी, गरीब भाई श्री राम राठौर और इनके परिवार के सभी सदस्य। लिखते हैं, जहां पर किसी की जान जा रही हो वहां पर झूठ का सहारा ले सकते हैं। वैसे सच्चाई जो है बहुत बड़ी चीज है, उसको अपनाना चाहिए, सच्चाई की ताकत होती है। मैं ये नहीं कहता कि हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन हर वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर ये लिखते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और संभवतः लिखा है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बहुत सुंदर, लेकिन अगली बार प्रवीण जी थोड़ा सा स्पष्ट लिखिएगा। इसी क्रम में प्रवीण चौहान, आप प्रवीण कुमार थे और अब प्रवीण चौहान क्या लिखते हैं? लिखते हैं, होमवर्क ना करने पर स्कूल के टीचर को ये झूठ बोलना पड़ता था कि हम होमवर्क की कॉपी घर पर भूल गए हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए हमें पनिशमेंट तो मिलती ही थी। भाई झूठ बोलेंगे तो पनिशमेंट का डर तो रहता है, वहीं अगर हम सच्चाई का साथ देंगे तो एकदम अवाक तरीके से, स्पष्ट और सुदृढ़ तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ है, और लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

जरिए अब आगे हम कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, फेसबुक पर मिले कमेंट्स को शामिल करके। अब इसी क्रम में आप हैं प्रदीप कुमार, हालांकि आपकी वर्तनी जो है शुद्ध नहीं है और स्पष्ट भी नहीं है, लेकिन हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी इस वर्तनी को शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप

श्रोताओं, आज का विषय भी रोचक था और आज के विषय को लेकर जो बहुत से श्रोताओं का खुश मिजाज अंदाज रहा, जो उनकी बातें रहीं कुछ चुलबुली कुछ गुदगुदाने वाली, और वाकई में उनको जानकर बहुत अच्छा लगा। जितना अच्छा फ़ोन कॉल्स पर आपकी बातों को शेयर करना अच्छा लगता है, आपसे रूबरू होना अच्छा लगता है, उतना ही फेसबुक के माध्यम से भी आप तक पहुंचना, आपसे रूबरू होना हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ना, आपकी इन बातों को, इन गीतों को इतना हमने आनंदित किया, हमने और सभी श्रोताओं ने, कि पता ही नहीं चला समय कब गुजर गया। जरा देखिए घड़ी की ओर, बिल्कुल घड़ी का इशारा हो रहा है कि हम अपने कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर ले जाएं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं कार्यक्रम के प्रति जो हैं हम तक जरूर पहुंचाएं। दो माध्यमों से आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं, एक तो पत्रों के माध्यम से और दूसरा ईमेल के जरिए। पत्रों के लिए आप नोट कीजिए पता, कार्यक्रम आपका पत्र मिला, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, बरेली का पिन नंबर है 243001। वही ईमेल के जरिए आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करें, आपका पत्र मिला bareli@gmail.com पर। तो अब श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा बेसब्री से इंतजार। क्या होंगे आपके सुझाव और कौन सी होंगी आपकी शिकायतें, इन सबको हम बेसब्री से इंतजार करेंगे और सबको शामिल करेंगे। तो अब इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

सायं 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-251-7200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरेपुटिक हाइपोथेरेमिया, कब, क्यों और कैसे, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को सायं 4 बजे से, यानी कि कल सायं 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-251-7200।

शाम के 5 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हुए हैं भजन संध्या। लीजिए पहली प्रस्तुति अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

आप सुन रहे थे अर्जुन, मैं नर नारायण हूँ, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये भजन। नर में है नारायण, महेंद्र कपूर की आवाज़ में अब ये भजन।

मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में रहते अगले भजन में भी आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की। अब तो आओ धनुष के धारी।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आपको बता देते हैं कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यूं तो हमें कुछ देर पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन हम आपको किसी कारणवश नहीं बता सके। तो अब ध्यान से सुनिएगा हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में 5:30 पर लेकर आएंगे नारी संसार। युवाणी होगा शाम 6:00 होगा आज का सवाल, और विश्व सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर होगा कुछ खास। किसानवाणी में आज की बात का विषय रहेगा भूमिगत जल संरक्षण, खेल बचाओ अभियान, साथ ही होगी कृषक गोष्ठी, मौसम नसीहत और मौसम समाचार। समय याद रखिएगा शाम 6:30 का। 7:00 ग्राम जगत में नशा नाश की जड़, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अनुष्का गुप्ता से की गई वार्ता आपको सुनवाएंगे, जिसका विषय रहेगा नशा मुक्त समाज की आवश्यकता। 7:31 पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम होगा रेडियो हेल्पलाइन। कल सुबह 8:15 और कल दिन होगा क्योंकि शुक्रवार, तो ये समय रहेगा फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम का। सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे सुबह 10:00। पर सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। समय याद रखिएगा सुबह 11:30। वहीं आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:00। 3:30 पर समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। 4:00 होगा आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कल शाम 5:30 का समय रहेगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम लकी 3 कार्यक्रम का। और समय याद रखिएगा लकी 3 कार्यक्रम के लिए 5:30। 5:45 का समय रहेगा सामयिक वार्ता का युवाणी 6:00, जिसमें होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। ग्राम जगत में चर्चा होगी बच्चों को शिक्षित करें। समय रहेगा 6:30 का। वहीं 7:00 होगी कृषि पाठशाला, जिसमें कृषि में ड्रोन का प्रयोग किस तरह, इस पर जानकारी देंगे श्री विनीत कुमार शुक्ला। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम पुनः लेकर आएंगे कल 7:31 पर रेडियो हेल्पलाइन। तो श्रोताओं, ये तो थी रूपरेखा हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की और कल प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। और आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।

रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 20 जून 2026 को सायं 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरेपोटिक हाइपोथेरेमिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को सायं 4 बजे से, यानी कि कल सायं 4 बजे से। तो श्रोताओं, इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विषय और विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में

हाइपोकोटिक हाइपोथर्मिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को सायं 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 5:30 हुए हैं और लीजिए अब सुनते हैं भावना रायजादा के साथ कार्यक्रम नारी संसार।

गुड इवनिंग, नमस्कार। नारी संसार प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही खुश होंगी और प्रसन्न होंगी, और हूँ भी क्यों ना। आप सुन रही हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो रविवार आने वाला है उस दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि 21 जून का दिन जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखा जाए तो इस वर्ष की जो थीम है वो है स्वास्थ्य एवं सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग। देखा जाए बहनों तो योग जो है वो भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य देन है, जिसने आज पूरे विश्व में स्वास्थ्य और संतुलन का संदेश फैलाया है। बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर और मन में अनेक परिवर्तन आते हैं, और ऐसे में योग न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि लचीलेपन को बनाए रखने में भी सहायता करता है, और इसके साथ ही साथ हमारी जो मानसिक शांति है और जो आत्मविश्वास है उसको भी सबल प्रदान करता है। जी हाँ, नियमित योगाभ्यास से जहाँ तनाव कम होता है वहीं एकाग्रता बढ़ती है और शरीर जो है वो अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बना रहता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग जो है वो स्वस्थ जीवन जीने का एक सरल और प्रभावी माध्यम है। प्राणायाम, ध्यान और हल्के योगासन उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम और आप दोनों मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि अपने परिवार और समाज के प्रत्येक सदस्य, विशेषकर बुजुर्गों को योग अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि वो स्वस्थ रह सके, आत्मनिर्भर रह सके और साथ ही साथ खुशहाल जीवन जी सके। और इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो आज का स्पेशल सेगमेंट है इनसे मिलिए, वो हम सुनेंगे इस गाने के बाद।

0: साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: इसे ही सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाली 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो आज का हमारा ये सेगमेंट योगा के ही नाम है। और ऐसे में आज हमने अपने इस सेगमेंट में आमंत्रित किया है हमारे शहर की जानी मानी योगाचार्य लवी शर्मा जी को। तो लवी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम। नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा प्रणाम। मेरा नाम लवी शर्मा है और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। आने वाले इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं, जितने भी हमारे श्रोता है, वो ये जानना चाहेंगे कि योगा का हमारे जीवन में महत्व क्या है।
2: देखिए, योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच एक जो बैलेंस होता है, उसे स्थापित करने का एक मीडियम है, माध्यम है। योगा हर उम्र के व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। सिर्फ 20-30 मिनट की नियमित अगर आप अभ्यास भी शरीर को लचीला बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और मन को शांत रखता है, तो दिक्कत ही क्या है? क्या हम अपने फायदे के लिए अपने जीवन के 20-30 मिनट भी खुद पर खर्च नहीं कर सकते? इंटरनेशनल योगा डे पर हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है, लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है और लोगों के लाइफ में एक जो होता है हेल्दी लाइफ, उसको अपनाने के लिए एक मोटिवेशन देना होता है। जो भागदौड़ भरी लाइफ है, उसमें योगा स्ट्रेस कम करता है बहुत ज्यादा, और बॉडी हेल्दी बनाना और मेंटली स्ट्रेस कम करना, ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है।
1: आप ये कहने का मतलब ये है कि जब हमारी आजकल की जो जिंदगी इतनी भागम भाग हो गई है, तो ऐसे में अपनी बॉडी को, हमारा जो मस्तिष्क है, उसको थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा सुकून योगा के जरिए ही दिया जा सकता है।
2: जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि देखिए, योगा मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक मेरा डेली रूटीन है, एक जीवन शैली है। जब कहीं उसको एक्सपीरियंस किया कि कितना इसका बेनिफिट है, उसको एक्सपीरियंस किया, तब मैंने इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक स्टार्टिंग की।
1: आपका जो खुद का अनुभव है, वो अब आप दूसरों में बांट रहे हैं और इससे बहुत से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: थोड़ा सा हमें इतिहास के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से भारत में योग का आरंभ हुआ।
2: देखिए, योगा की जो शुरुआत हुई थी वो प्राचीन भारत से हुई है। इसका इतिहास लगभग 5000 साल से या उससे ज्यादा ही पुराना माना जाता है। अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा हम पीछे जाएंगे तो आप देखते हैं महादेव सबसे बड़े योगी हैं, शिव जी को आप देखते हैं मेडिटेशन है या फिर किसी भी तरह का आसन है या सूर्य नमस्कार है। पतंजलि जी ने योगा सूत्र के माध्यम से योगा को व्यवस्थित रूप दिया था। मतलब एक जो होता है ना कि अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है योगा का, वो महर्षि पतंजलि जी ने दिया था। आज योगा पूरे विश्व में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अपनाया जा रहा है, तो उसका क्रेडिट तो हम इन्हीं को देंगे।
1: अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि जब हम योगा की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमने जिम ज्वाइन कर रखा है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों तरीके की एक्सरसाइजेज में?
2: जिम में क्या होता है, आप फिजिकली अपने आप को कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही है। जिम और योगा दोनों ही वैसे तो हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन उनका फोकस अलग अलग होता है। जिम प्रॉपरली मसल्स, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और फिजिकल फिटनेस बढ़ाने पर जो होता है ना, सेंटर्ड होता है। जबकि योगा क्या होता है, योगा आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी जो ब्रीथ प्रोसेस है, आपका जो मन है, उन सब में बैलेंस बनाने का काम करता है। जिम हमें फिट बनाता है, नो डाउट, जबकि योगा फिटनेस के साथ साथ आपको कामनेस, बैलेंस और आपको मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आपको जो है फिट रखता है। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। थोड़ा सा महिलाओं की बात करेंगे कि घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं और महिलाएं बाहर भी जाती हैं, तो ऐसे में उनके लिए कौन कौन से योगा जो है प्रेफर करेंगे आप?
2: देखिए, महिलाओं के लिए तो योग बहुत ज्यादा जरूरी भी है और फायदेमंद भी है। ये हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने या स्ट्रेस कम करने के लिए या फिर फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ाना, हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद तो करता ही है। एक महिला की जो विभिन्न चरणों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है ना, तो उसके लिए आप जैसे भुजंगासन है, कोबरा पोज, डॉग पोज है, और प्राणायाम में अगर आप करेंगे तो अनुलोम विलोम है, कपालभाती है। महिलाओं के लिए सेतु बांध आसन बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिन महिलाओं को फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। देखिए आजकल की जो जनरेशन है वो जंक फूड में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, गलत खान पान, हम जो है एक्सरसाइज को और योगा को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के

0: कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी जो हेल्थ है स्पेशली इन गर्ल्स, हार्मोनल डिसबैलेंस है या किसी भी तरह से स्किन इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जैसे फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मैं कहूंगी वो है सेतु बांधा आसन। 3 आसन अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आई थिंक आपको किसी भी डॉक्टर की, किसी भी तरह की टैबलेट्स की, वाइटामिन की, किसी भी चीज की नीड नहीं होगी। आप बस उन्हें अपने डेली रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व कर ले। कोबरा पोज, भुजंगासन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सूर्य नमस्कार जिसमें आपके 12 आसन आ जाते हैं, अगर आप सूर्य नमस्कार 5 बार भी कर लेंगे ना, शुरुआत करेंगे 5 बार से, आप उसको 5 बार करेंगे आपके वो 12 आसन आपको प्रॉपरली फिट कर देंगे। और दूसरा आपका जो तीसरा आसन है वो है आपका सेतु बांधासन। बस इतना अगर महिलाएं रेगुलरली कर ले ना, मैं आपको एक तरीके से ये विश्वास दिलाती हूँ कि वो एक फिट लाइफ इजीली जी सकते हैं, उन्हें कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, कोई मसल ट्रेनिंग, कुछ करने की नीड नहीं।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, जो हमारी महिला श्रोता इस समय आपको सुन रही हैं, जरूर इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगी। और चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: सभी को यही कहना चाहूंगी कि भाई हर इंसान जो है, मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी दिनचर्या में योगा को अवश्य शामिल करें। छोटी सी शुरुआत भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगी।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और उम्मीद करती हूँ जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं वो आज से ही शुरुआत करेंगे। चलते आपको एक बार फिर योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये तो था हमारा आज का सेगमेंट इनसे मिलिए, जिसमें हमने बातचीत करी लवी शर्मा जी से। और उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनों को और हमारे श्रोताओं को ये समझ में आ गया होगा कि योगा करने का सही समय आज का है, यानी कि आज से ही शुरुआत करनी है। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि फेसबुक के हमारे इस प्रोग्राम यानी कि नारी संसार प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में जाकर आज के प्रश्न का उत्तर देना है, जिसे हम शामिल करेंगे प्रोग्राम के एंड में। और अब फिलहाल तो समय है एक गाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: वेलकम बैक इन नारी संसार। बहनों, अभी तो बात हुई थी योगा की, और योगा के साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, गर्मी का मौसम है और साथ में तेज धूप, उमस, पसीना और धूल, ये सारी ही सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारी त्वचा को, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, और ऐसे में हमारी त्वचा को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम केवल चेहरे पर ध्यान देते हैं, जबकि त्वचा की सुरक्षा के लिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को बार बार छूने से बचें। हमारे हाथ दिन भर कई चीज़ों के संपर्क में आते हैं, और उन पर मौजूद जो धूल के कण होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो त्वचा की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ गर्मियों में तकिए के कवर, तौलिया और रुमाल को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, क्योंकि पसीना और गंदगी जो है वो त्वचा पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को भी समय समय पर साफ करना एक बहुत ही ज़रूरी और अच्छी आदत है। इसके साथ ही साथ धूप से घर लौटने के बाद तुरंत बहुत ठंडे पानी या बर्फ का प्रयोग करने से बचें। त्वचा को कुछ समय के लिए सामान्य तापमान पर आने दें और फिर ठंडे पानी से साफ करें। यदि आप लंबे समय तक बाहर रहते हैं तो चेहरे के साथ साथ गर्दन, हाथों और कानों के पीछे की त्वचा की सफाई पर भी ध्यान दें। ये हिस्से ऐसे होते हैं जो अक्सर

देखभाल से छूट जाते हैं। और इसके साथ ही साथ गर्मी के मौसम में पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पर्याप्त नींद जो है ना वो त्वचा के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट। अच्छी नींद जो है वो त्वचा को स्वयं मरम्मत करने का समय देती है, उसकी हीलिंग करती है, और साथ ही साथ हमारा जो फेस है उस पर नेचुरल ग्लो बनाए रखती है। इसके साथ ही साथ स्ट्रेस को भी कम करती है, और जो स्ट्रेस लेवल है जब वो हमारा कम होता है तो उसका असर हमारी स्किन पर दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हेल्दी और ब्यूटीफुल स्किन जो है वो किसी महंगे प्रोडक्ट से नहीं बल्कि सही आदतों से, स्वच्छता से और संतुलित जीवन शैली से ही प्राप्त होती है। और इस गर्मी में अपनी स्किन को केवल धूप से नहीं बल्कि लापरवाही से ही भी बचाइए। और इसके साथ ही साथ सुन लेते हैं ये गाना और उसके बाद हमारे प्रश्न और आपके जवाब।

और श्रोताओं, हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि लू लगने पर क्या करना चाहिए। तो उसका सही जवाब हमको दिया है प्रवीण चौहान जी ने। इन्होंने बताया है कि लू लगने पर जल्द से जल्द ठंडी जगह जाकर कपड़ों को ढीला करें, शरीर को ठंडा रखने का प्रयास करें, साथ ही साथ माथे पर गीले पानी की ठंडी पट्टी रखना चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे ठंडा ठंडा नींबू पानी पीजिए, छाछ है, तरबूज है, नारियल पानी है, और अगर तब भी आराम ना मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आपने प्रवीण जी दिया। और इसके साथ ही साथ हम और श्रोताओं से भी कहना चाहेंगे कि अपने जवाब जो है वो ज़रूर लिखकर भेजिए और हम आपके नाम ज़रूर शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है ये आप चिट्ठी पत्री के माध्यम से और ईमेल के ज़रिए भी बता सकते हैं। ईमेल आईडी है आपका patrimila.bareilly@gmail.com। और अब भावना कंचन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।

सुन रहे थे नारी संसार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 6 बजे हैं और इसी समय के साथ नेहा जी लेकर हाजिर हो गई हैं कार्यक्रम युववाणी। तो लीजिए इनके साथ सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम युववाणी में आपकी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह के साथ। दोस्तों, आजकल हम सबके लाइफस्टाइल्स कितने चेंज हो गए हैं ना, और जिसका मेन रीज़न है हमारा खान पान, सिटिंग लाइफ शेड्यूल्स जो हमारे रहते हैं, और साथ ही आजकल सभी लोग ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना करने लगे हैं, और जिसका जो डायरेक्ट असर है वो हमारी हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए आज एक खास दिवस मनाया जाता है जो कि है वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। गैस्ट्रोनॉमी के बारे में आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये जो गैस्ट्रोनॉमी है इसका मतलब होता है कि भोजन, संस्कृति और पाक कला के बीच संबंधों का अध्ययन, और साथ ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का मतलब है ऐसा भोजन तैयार करना जिसमें ये ध्यान रखा जाए कि जो खाद्य सामग्री है वो कहाँ से आई है, कैसे उगाई गई है, और हमारे बाजारों से लेकर हमारी थालियों तक ये कैसे पहुँचती है। और इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं और हमारी फैमिली जो सारा फूड कंज्यूम कर रही है उसका सारा डायरेक्ट असर हमारी सेहत पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों ये जो दिवस है वो सतत कृषि का समर्थन करता है, जैव विविधता को संरक्षित करता है, और भोजन की बर्बादी को रोकने यानी कि ज़ीरो फूड वेस्ट के लिए प्रोत्साहित भी करता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है देशों में, एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ है वो भी कुछ लोग ओवर ही कर देते हैं, एंड गरीबी के कारण ना जाने कितने लोगों को डेली भूखा सोना पड़ता है, और हम में से ना जाने कितने लोग हैं जो जाने अनजाने में खाने को वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत गलत भी है। हम में से ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिसको इसकी नीड है, इसलिए इन रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना चाहिए और फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए इस दिवस का उद्देश्य ये भी है कि पर्यावरण अनुकूल खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही स्थानीय खाद्य संस्कृतियों का संरक्षण करना और भोजन विकल्पों के पर्यावरणीय व सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, अपने प्रोग्राम को हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, बट अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, अभी हमने आपसे बातें करी थी वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में, जिसमें जो हमारा खान पान है, हमारी फूड हैबिट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आजकल के हम कितना हेल्दी रहेंगे या हम कितनी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, और जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल और बेटर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे इस वार्ता में इंदु के साथ।
5: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदु है एंड मैंने बैचलर ऑफ साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। फूड हैबिट्स हम सबकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करती है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना बिलोंग करते हों। खुद को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना इनफ नहीं है। हम एक्सरसाइज के साथ साथ क्या क्या इनटेक करते हैं और कब करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली आज के समय में जब नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पानी हवा सब दूषित हो रहा है, सब खुद को स्वस्थ बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। एंड जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें दवाई के साथ हमारे खाने पीने के बारे में भी सजेस्ट करते हैं, अलग चीज़ें खाने को बताते हैं। सो हम वो स्टेज आने ही क्यों दें कि हमें दवाई खाने के बाद समझ आए। हमें अभी से बल्कि आज से ही अपनी फूड हैबिट्स को सुधारना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्वस्थ भोजन है क्या। सो वो फूड जिसमें हमारे शरीर को फिट रखने के लिए सही मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद हों, वही हमारे लिए हेल्दी फूड है। एंड ये फूड हैबिट्स बड़ों से ज़्यादा आजकल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आज उनका लाइफस्टाइल हो गया है वो काफ़ी हार्मफुल हो गया है उनकी हेल्थ के लिए। आजकल हर कोई अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाए तो उनको चुप कराना हो तो हम तुरंत पैकेट फूड ला देते हैं, लाइक चिप्स, चॉकलेट्स, या घर पे कुछ खाने का मन नहीं हो तो इंस्टेंट नूडल्स ले आए विदाउट नोइंग कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हम कभी उन पर बने न्यूट्रिशन वैल्यू, इंग्रेडिएंट्स, या कुछ लोग तो एक्सपायरी डेट तक चेक नहीं करते होंगे। ये सब चीज़ें, मोस्टली चीज़ें पाम ऑयल, मैदा, शुगर, आर्टिफिशियल कलर्स या प्रिजर्वेटिव से भरी होती हैं, जो सीधा बच्चों की ग्रोथ पर असर डालती हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, फिज़िकल मोमेंट भी ना के बराबर होना, यही रीज़न है आजकल के बच्चों में डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स सुनने में आ रही हैं। इसलिए हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करें। नट्स, फ्रूट्स, ओट्स ये सब लें जो एनर्जी और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। एंड लंच में सैलेड, वेजिटेबल्स ज़रूर लें। रॉ फूड को शामिल करें डाइट में। फाइबर रिच फूड खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। एंड विंटर सीजन में तो सब्जी

सब्जियां भी तरह तरह की आती हैं, वैरायटी ज़्यादा रहती है, सो हम उनका सूप, साग, मल्टीग्रेन रोटी सब बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी रहता है। एंड अगर आप पैकेज फूड लें तो उनके इंग्रेडिएंट्स देख लें पहले। सोडा ड्रिंक्स बिल्कुल भूल जाएं अगर स्वस्थ रहना है तो, बिकॉज़ ये शुगर, वीक बोन्स जैसी प्रॉब्लम्स लाती हैं हमारे शरीर में। एंड शाम की चाय के साथ हम बिस्कुट, नमकीन खाते हैं, बट क्या आपको पता है उस एक बिस्कुट में अप्रोक्स 2-3 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर होती है। यही रीज़न है लोगों में डायबिटीज़ का। इसको आप रोस्टेड पीनट्स, मखाना, चना के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुद हेल्दी खाएं एंड बच्चों में भी अवेयरनेस लाएं कि हेल्दी फूड हैबिट्स कितना ज़रूरी है। उनको लेबल्स पढ़ने के बारे में, जंक फूड के नुकसान के बारे में सिखाएं, सो वो खुद समझने लगेंगे, तभी उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे। एट द एंड मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारे थॉट्स हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, वैसे ही हमारा खान पान हमारी फिजिकल हेल्थ पर। सो ईट केयरफुली एंड स्टे हेल्दी।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओं, आपको हमारा आज का सवाल याद है ना, जो कि हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू पूछा था। चलिए, जो हमारा आज का सवाल है मैं आपको फिर से एक बार और याद दिला देती हूँ। वो था कि सतलुज नदी जो है वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो श्रोताओं, अगर अभी तक आपने इसका जवाब नहीं ढूंढा है और कमेंट नहीं किया है तो वो आप अभी भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो हम आपको बताएंगे इस गाने के बाद।

श्वेता, हम आपसे बात कर रहे थे सतलज नदी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो सतलज नदी है ना, ये सिंधु नदी की सबसे पूर्वी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ये नदी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से निकलती है। तिब्बत में इसे लांगचेन खबाब इस नाम से भी जाना जाता है, और जो इसकी कुल लंबाई है वो 1550 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 1050 किलोमीटर लंबी ये भारत में बहती है। और इसकी जो हम सहायक नदियों की बात करें तो स्पीति, बसपा और ब्यास इसकी कुछ मेन सहायक नदियां हैं। साथ ही ये सतलज नदी तिब्बत से पश्चिम की ओर बहते हुए हिमाचल प्रदेश के शिपकीला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। और ये जो शिपकीला पास है, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में समुद्र तल से लगभग 3120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो शिपकीला पास है, सिक्किम में नाथुला एंड उत्तराखंड के लिपु लेख इस पास के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत का तीसरे सबसे सीमा स्थान भी है। और दोस्तों, ये जो हमारा आज का सवाल है, इसका जवाब हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू बिल्कुल ही सही दिया है, जो कि है अजीत कसाना, राम कुमार रेवार, निसार सलमानी, रवि कुमार राहुल, मुकेश कश्यप, हीरामणि वर्मा, ताज अंसारी, प्रदीप कुमार और लाल मोहम्मद अंसारी ने। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में जो भी हम आपसे सवाल पूछते हैं, उसके कमेंट्स और उसके जो जवाब है वो आप ऐसे ही करते रहें। वेल, अब कार्यक्रम के एंड में हम सुनते हैं आज का आखिरी गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी का समय आज बस यहीं तक सीमित था। अपनी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह को दे अनुमति, कल फिर से आपसे बातें होंगी कार्यक्रम युववाणी में ही। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब भैया बहनन को आपकी बहन पूनम
1: और भैया रघु की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और कैसे हाल चाल है रघु भैया आपके?
1: हाल चाल तो पूनम बहन देख ही रही हो कि कमजोरी कमजोरी सी लाग रही है। खेती को काम इस समय तो तेज चल रहा है और ऊपर से घाम इतनी पड़ रही है कि हमारे तो धान लाग रहे तो 2-3 दिना से खेते में समझ लो पड़े हैं, अभी धान लग ना पाए।
0: अच्छा भैया तो जा कहो कि सवेरे संजा खेत पर रोटी खाने को मजा बहुत आता है आपका।
1: हाँ बस उतनी देर अच्छो लागते हो, वैसे तो घामे घाम है, बरस ना रहो कतई, बरस जातो तो थोड़ो जाए मौसम में ठंडक हो जाती, काम करते हुए अच्छो लागतो। एक
0: हाँ
1: तो इंजन चलाने पर रहो है और ऊपर से जाए कदहर बनवाने हैं, फिर लेबर को घेरने हैं कि भैया चलो खेत लगा दो बे, कहूँ कहते हैं कि अरे उनको लेखराज भैया को लगाने हैं, क्यों महेंद्र भैया को लगाने हैं, तो ऐसे ही घेरा।

0: गौरी चल रही है, गांव में मजदूरों की बड़ी कमी है, तो
1: हाँ
0: अब
1: वही
0: जय
1: है।
0: सोच रहे हैं कैसे उनके धान लग जाए।
1: बिल्कुल सही कही भैया। और जो समस्या तो हमारे सब भैया बहनों के आगे आती है, लेकिन हमें पता है हमारे भैया बहन इतने समझदार हैं और मेल प्रेम से सबसे रहते हैं, तो भैया एक दूसरे के वे जीताओं में लगवा देते हैं और आराम से उनके सबके धान लग जाता है।
0: हाँ ऐसो ही जाए तो और अच्छो है। वैसे देखो कल कही है कि देवीदास भैया से, तो वो कह रहे चार बालकन को लेके हम आ जाएंगे।
1: तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो जाका अगर चार बालक एक टाइम में चौरंगे तो 2 बीघा तो एक टाइम में लगा ही देंगे। अब फिर बचो खुचो संजा को लग जाए, दूसरे दिन को लग जाए।
0: आप सुनाओ पूनम बहन, धोती बड़ी चटक पह रही है, का दावत में से आ रही हो?
1: अरे ना भैया, दावत उबत मना जा रहे हैं हम तो इतनी गर्मी में।
0: अच्छा।
1: हाँ पर वो एक हो छोटो सो प्रोग्राम हमारे पड़ोस है, मैं भाई एक जन घर है लल्ला भाओ, तो बिन्ने अपने खूब अच्छो प्रोग्राम करो।
0: चलो कोई बात ना है, तो पुरियो खाओ, मगर खेती बाड़ी को ध्यान रखो, खेती को काम ना पिछड़ जाए। अब जब बताबो कि भैया बहन कलम और कागज लाए बैठे हैं, तो सवाल पूछ लो पहले।
1: हाँ हाँ भैया जरूर पूछ लेते हैं अपने भैया बहन से सवाल। तो भैया बहनों आज को सवाल है, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त कब आने वाली है? तो हमारे भैया बहन को जाको जवाब तो पता होगी, लेकिन हम भी करवावेंगे कार्यक्रम में आपके
0: अरे
1: जवाब से मिलान।
0: सवाल तो ऐसो पूछो है कि जिन भैया बहनों को नाए पता हो ही, उनके कान ठाड़े हुए होंगे। भैया किस्त में आते हैं 2,000 रुपया,
1: हाँ
0: और खेती किसानी को टाइम चल रहा है,
1: हाँ
0: काम चल
1: भैया,
0: रहा है। अरे डीजल ले लेंगे, खाद ले लेंगे, मजदूरन को दे देंगे।
1: अरे भैया कुल काम चल जाए वो हमारे भैया बहनन को।
0: हाँ अब जब बताबो पूनम बहन की, अब जैसे हम बताना रहे कि धान लगा रहे हैं, इंजन चल रहा है, लेकिन जा है कि जमीन में जो पानी को इस तरह बड़ो कम है गो है।
1: हाँ बहुत दिक्कत हो गई है भैया, ये घर के जाओ तो कहते हैं गर्मी की वजह से भी ज्यादा समस्या हो आती है खेती बाड़ी में।
0: हाँ तो देखो पूनम बहन कहा है कि जल है तो जीवन है, और जल है तो खेती है, मगर आज तेजी से जो भूजल स्तर गिर रहा हुआ है, तो हम किसान भैयन के लिए तो बड़ी चिंता को विषय बन गए हुए।
1: हाँ बहुत ज्यादा भैया, हमारे भैया बहनों को समस्या भी हो रही है, इसलिए आज घर की बातों जाए विषय पर करेंगे कि भूमिगत जल संरक्षण खेत बचाओ अभियान, कि हमारे भैया बहन किस तरीका से अपने खेत को बचा सकते हैं।
0: तो जा बताबो पूनम बहन की, जो भूमिगत जल होत का है आखिर?
1: भैया जब वर्षा को पानी जमीन के अंदर रिस के विभिन्न परतन में जमा हो जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। यहीं पर पानी कुआं हैंडपंपों और ट्यूबवेलों के माध्यम से हमें प्राप्त भी होता है।
0: तो अब ऐसा है कि हमारे देश में तो बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए भूमिगत जल पे ही आश्रित है। भाई बहुत से राज्यों में 60 से 80% सिंचाई भूजल से ही होती है।
1: हाँ लेकिन भैया समस्या जा है कि हम जितनों पानी निकाल रहे हैं उतनों वापस जमीन में ना पहुंच रहो है। बाको परिणाम भैया जय है कि जल स्तर लगातार नीचे जा रहो है।
0: अब देखो पूनम बहन का बतावे कि पहले गांव के चारों घाई ताल तलैया होय करती, तो बारिश होय करती तो गांव को पानी ताल तलैयन में ठहर जातो। अब ताल तलैयन में ठहर तो वो जो जमीन में स्तर है पानी को बहो बढ़तो है। अब आजकल कहा है कि ताल तलैया तो सब पाट ले, नाली नाली बह के वो सड़क पे चलो जाता है, घाम लगती है, सूख जाता है,
1: हाँ
0: या भाप बन के ऊपर चलो जा रहा।
1: हाँ भैया जा बात तो आप सही कह रहे हो कि हमारे भैया बहन कुछ ध्यान भी ना दे रहे हैं इस तरफ, कि आपने देखी हुई जो आपने बात करी तलैयन की, अरे वे उनके घर ना होता पास में जिनके, वे तो पाट पाट के उनको कतई चपटा बना देता है।
0: वह तो कमी है। और दूसरी बात जाए कि देखो अगर हमारे भैया बहन चाहें तो, जैसे छत है, छत को पानी घर में लें, एक बड़ो सो टैंक बनवावें, और जो बरसात को पानी है छत को चिकनो करवा दें। आजकल तो जाए हमारे भैया टाइल वाइल लगवा दे रहे हैं, तो साफ पानी हो, छत साफ रखें, बाको टैंक में भर लें। और अपने जैसे कितने काम होते हैं धुलाई के, सफाई
1: हाँ
0: के,
1: भैया जानवर
0: बेकाम
1: हंगवाने हैं, बहुत से काम है घर के।
0: बे टैंक के पानी से कर लें, तो इस तरीके से भूजल संरक्षण कर सकते हैं। और बात जा है कि जैसे सरकारी संस्थान हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ अगर व्यवस्था हो जाए, और बा पानी को जो वर्षा जल है बाको अगर हम सही से संरक्षण कर लेंगे और भूमि में वापस भेज देंगे, तो भूजल स्तर बनो रहेगा।
1: हाँ और भैया बात से अलावा हमारे भैया बहन अगर जैसे अब तो बारिश ना हुई रही है, लेकिन जिस समय पे बारिश होती है और घर के खेत में पानी हुई जाता है, अब मान लो घर के ने धान लगाए और थोड़े बहुत दिन बाद बारिश हुई।
0: हाँ।
1: लेकिन कुछ भैया का करता ना, उनकी जो खेत की मेड़े होती हैं उनमें चूहा गड्ढा कर देता है।
0: हाँ।

0: या कोई समस्या ऐसे वैसे हो जाती है कि कोई ट्रैक्टर निकाल के लेगा तो उनकी मेड़ खराब हो गई, या वे चले तो मेड़ खराब हो गई, तो वह मेड़ बंदी भी ठीक तरीका से ना करता है।
1: मेड़बंदी अगर अच्छी से करेंगे तो संरक्षण होएगो। और दूसरी बात जाएगी, देखो आजकल एक नई विधि आ गई है धान की बुवाई की, मशीन से जैसे गेहूं बोए जा रहे हैं वैसे ही धान बोए जा रहे हैं। तो अगर भैया जब विधि भी अपनाएंगे तो पानी की बहुत बचत होगी, क्योंकि हम कितने पानी में कदहर करते हैं तो धान की रोपाई करते हैं। तो
0: हाँ
1: ये सब बातें इनको ध्यान रखेंगे तो जाए कि भैया भूजल स्तर में सुधार हो जाएगा।
0: हाँ भैया वो तो हो जाएगा, लेकिन एक बात है, घर के ने तो बहुत बात कर ली जय बात पे कि खेत बचाओ अभियान पे, एक कृषि गोष्ठी है जय विषय पे कि खेत बचाओ अभियान, घर के जो खेत की मृदा है बाको कैसे सुधार है।
1: अब भैया बात तो सुधारने पर रही पूनम बहन, ना तो जो हमारी भावी पीढ़ी है वह खेती ना कर पाएगी, और रासायनिक उर्वरकन को जो असंतुलित प्रयोग हमने शुरू कर दिया हुआ है वहां से बहुत मट्टी खराब हो जा रही है। तो चलो जान लेते हैं कि जे भैया बहन का बता रहे हैं जो गोष्ठी
2: जिससे
1: में।
2: कि हमारा
0: हाँ
2: पौधा
0: भैया,
2: सूखे ना, फिर उसको हम मिट्टी से पाट दें।
0: आज कृषि गोष्ठी के अंतर्गत हमारी बातचीत का विषय है खेत बचाओ अभियान, जिसके अंतर्गत संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के बारे में बात करेंगे। हम अपने साथियों से बातचीत करें उससे पहले जान लेते हैं उनको परिचय। तो सबसे पहले तो भैया बहनों आप लोग को राम राम।
2: राम राम राम।
0: आप बताइए भैया आपका नाम क्या है,
2: मेरा नाम विजय कुमार है,
0: कहाँ के रहने वाले हो भैया?
2: कुंडरिया फजल्लापुर तहसील अमला जिला बरेली।
0: आपको नाम?
3: मेरा नाम है कांति देवी वर्मा।
0: आप कहाँ की रहने वाली है कांति देवी?
3: ग्राम रामपुरा तहसील मीरगंज।
0: और भैया आप कहाँ के रहने?
2: कुमार वर्मा है, मैं ग्राम रामपुरा तहसील मीरगंज जिला बरेली का रहने वाला।
0: कब से खेती बाड़ी कर रहे हैं
2: जी? ऐसी 3-4 साल हुए हैं।
0: और कांति देवी आपकी उम्र कितनी है?
3: 35।
0: आप कब से कर रही हैं खेती बाड़ी?
3: हमें तो काफी समय हो गया खेती करते करते।
0: क्या समय हो गया?
3: 10-15 साल हो गए।
0: और विजय कुमार जी, शशि कुमार जी, आप कब से कर रहे हैं खेती बाड़ी? और
2: मैं खेती कम से कम 4-5 साल हो गए करते हुए, उससे पहले मेरे पापा करते थे।
0: सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है अपने खेत को बचाने के लिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मृदा स्वास्थ्य, कि हमें अपने मृदा को कैसे स्वस्थ रखना है। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि मृदा को स्वस्थ रखने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत हो?
2: सबसे पहले मृदा अपरदन से बचे। भूमि अपरदन से जो है मिट्टी में प्रदूषण फैलता है, और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग किया जाए, सीमित
0: जी
2: किया जाए,
0: जी
2: जैविक खाद का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए, और पेड़ पौधे भी अत्यधिक लगाए जाएं जिससे मृदा का स्वास्थ्य बना रहे।
0: शशि कुमार जी ये बताइए कि आप खेती बाड़ी करते हैं तो इस समय क्या क्या हो रहा है आपके खेत?
2: इस समय अभी तो मेहनता हुआ है की कटाई कर रखी है, पॉपुलर लगा रखी है।
0: तो पॉपुलर के लिए किन किन बातों का ध्यान रख?
2: सबसे पहले उसको लगाने के लिए खेत में एक देसी खाद डालते हैं, फिर उसको प्लेन करते हैं, के बाद में उसमें पंक्ति बाई पंक्ति गड्ढे किए जाते हैं, फिर उसमें हम अपनी पॉपुलर लगाते हैं।
0: कितने दिनों बाद खेत में पानी लगाना पड़ता है?
2: सिंचाई में जब हम पॉपुलर लगाते से पहले गड्ढों में पानी भरते हैं, जिससे कि हमारा पौधा सूखे ना, फिर उसको हम मिट्टी से पाट देते हैं लगाने के बाद।
0: कांति देवी जी आप बताइए, आप खेती बाड़ी करती हैं, पशुपालन भी करती होंगी?
3: जी मैम।
0: तो खेती बाड़ी में आप जा समय क्या क्या हो रहा?
3: इस समय हमने जैसे धान की पौध लगा रखी है, और बस यही खेतों खुतों की जुताई उताई हो गई है, धान लगाने की तैयारी चल रही है।
0: किन किन बातों का ध्यान रखनी है कि जो कि आपके धान की जो पौध है वो अच्छी हो, उससे अच्छा उत्पादन मिले?
3: समय समय पे पानी लगा रहे हैं उसमें, जैसे कोई कमी नमी उसके लिए दवा भी लगा रहे हैं ताकि पौध खराब ना हो। धूप में बार बार पानी लगा रहे हैं या बहुत बेकार हो जाएगी।
0: पानी लगाने का कोई विशेष समय होता है कि किसी समय भी पानी लगा सकते हैं?
3: ना देखते हैं जैसे उसमें पानी का जब भी जरूरत होती है, 15 दिन में पानी लग जाना चाहिए।
0: धान के अलावा और क्या क्या हो रहा है आपके?
3: सब्जी उब्जी भी लगा रखते हैं।
0: कौन कौन सी सब्जी लगा रखी है?
3: अभी इस समय लौकी लगा रखी है, तुरई भी है और ग्वाल की फरी भी है। जैसे हम अपनी सब्जी लगा लेते हैं, हम खुद यूज के लिए लगाते हैं घर पे अपने, और बाहर की तो ये है उनमें दवा ववा लगती है तो इसलिए उनको कम यूज करते हैं। हम अपनी घर की सब्जी जैसे खाओ तो अच्छी रहती है,
0: बहुत
3: खरीदने वाली उसमें तो आज छिड़काव होगा दवा का, कल के लिए तोड़ के लाके बाजार में बेच देंगे, वो खाएंगे उससे बीमार और हो जाएंगे।
0: जिनके पास जमीन नहीं है या जिन्होंने नहीं लगा रखे हैं पौधे, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि जब भी घर पे सब्जी आए तो उसको अच्छे से धोएं?
3: पहले उसको धुलें, उसके बाद जैसे उसको रखें, बाजार से लाने के बाद पहले धुलनी चाहिए।
0: आपने पशुपालन भी करती है?
3: जी मैम, भैंस है हमारे पास।
0: उसकी साफ सफाई कैसे, उसका चारा सबका कैसे बंदोबस्त करती है?
3: चारा तो जैसे बच्चे उच्चे भी ले आते हैं, चरूरी बो रखी है वो ले आते हैं, और घर पे उसकी जैसे टाइम से उसे खिलाते हैं, उसको दो टाइम नहलवाते हैं सुबह शाम। अच्छा, गर्मी अच्छा। बहुत हो रही है इस समय।
0: हाँ, बहुत गर्मी।
3: और पशु नहाएगा नहीं तो दूध भी अच्छे से नहीं देगा, और वो भी परेशान रहेगा, हम लोग भी परेशान रहेंगे उससे।
0: आपने पशु पाल रखे हैं, तो आप पशुओं को जहाँ रखती हैं वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखती हैं, कि कौन सी ऐसी सुविधाएं दें अपने पशुओं को कि वो अच्छे से रह पाए?
3: अब गर्मी में तो इस समय पंखे चल रहे हैं, और नीचे जमीन पे जैसे मिट्टी का नहीं है उसमें फर्श है, धुलाई उलाई लगाते

0: रहती हैं,
1: अच्छा
0: आराम से
1: अच्छा
0: रहें। और गंदी जगह में रहेगा तो पशु बीमार भी हो जाएगा, उसके खुरपका ये सब बीमारी हो जाती है उनको।
1: सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे खेत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती
0: कल अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है।
1: जी।
0: इससे जो है पैदावार और फसल का उत्पादन है वो कम मिल रहा है।
1: आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जैसे कि रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें, कोई भी खेत तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले हमें खेत की जुताई करने के बाद में उसमें जो है देसी खाद जो अपने पशु पाल रखे हैं उनसे जो गोबर प्राप्त होता है उसका जो है खाद प्रयोग करना चाहिए हमें। अगले जो जैविक खाद आजकल मार्केट में जो बिक रहा है, केंचुए की जो खाद है
1: हाँ,
0: वो बन रही है, वो उसका उपयोग अत्यधिक करना चाहिए। इससे जो है मृदा स्वास्थ्य बना रहे।
1: जैसा कि देखने में आ रहा है कि अब लोग जो हैं वो जैसे हरी खाद कम बो रहे हैं, इस तरफ उनका रुझान क्यों कम होता जा रहा है?
0: आजकल जो है व्यक्ति दो फसलों की जगह तीन फसलें अत्यधिक लेना पसंद कर रहा
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: यही कारण है सबसे बड़ा कि ढेंचा बोने का जो है जो समय है वो आदमी दे नहीं पा रहा है।
1: एक फसल खत्म हुई, दूसरी
0: दूसरी
1: फसल बो
0: बोदे
1: दें, बीच में कोई अंतर ना हो। ढेंचा बोते हैं उसकी खाद की बात ही अलग होती है।
0: वो
1: अब
0: सबसे सर्वोत्तम खाद मानी गई है।
1: सर्वोत्तम खाद मानी गई है।
0: जी
1: अपने खेत को बचाने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखें हम, जिससे कि हमारा खेत बचे, हमारी हमारे जो खेत की मिट्टी है वो अच्छी रहे, उर्वरा शक्ति उसकी अच्छी रहे?
2: पहले तो हमें अपनी जांच करानी चाहिए,
1: हाँ
2: मिट्टी उपजाऊ है या नहीं
1: जी
2: है,
1: जी
2: बंजर है,
1: हाँ
2: उसके लिए तो हमारी मिट्टी का पीएच मान 7.5 होना हो चाहिए, जिससे कि
1: अच्छा
2: मिट्टी
1: अच्छा
2: अच्छी होनी चाहिए।
1: क्योंकि मिट्टी का अगर हम जांच करवाएंगे, जैसे हम अपने शरीर की
2: जी
1: जांच कराते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर में किन किन चीजों की कमी है, ऐसे
2: जी
1: ही मिट्टी की जांच कराने से पता चल जाता है हमारे खेत में किन किन पोषक तत्वों की कमी है।
2: जी
1: तो जब हमें उसका ज्ञान हो जाएगा तो हम उन पोषक तत्वों की कमी को दूर कर पाएंगे। तो सबसे मेरे ख्याल में हमारे साथियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खेत तैयार करने से पहले अपनी मिट्टी की जांच जरूर करानी
2: जी
1: चाहिए।
2: बिल्कुल
1: क्या आप अपने खेत में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं?
2: जी।
1: पानी बचाने के लिए कोई ऐसी तरकीब है जो कि आप अपनाते हो?
2: पानी बचाने के लिए हम खेत में मेड़बंदी करना जरूरी होता है, जैसे कि हमारा खेत का पानी दूसरी जगह नहीं निकले,
1: जी जी जी
2: व्यस्त ना हो।
1: बात करते हैं टपक सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, ये भी तो ऐसी सिंचाई है जिसमें कि हम पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं।
2: जी
1: कांति देवी जी, आपसे,
2: जी
1: आप खेती बाड़ी करती हैं, पशुपालन करती हैं और घर गृहस्थी भी संभालती होंगी,
0: जी मैम घर गृहस्थी भी संभालते हैं।
1: तो आपके परिवार में कौन कौन है?
0: बेटी है, बेटा है हमारा, हमारे हस्बैंड है, सास ससुर है।
1: खेती बाड़ी और घर में कैसे तालमेल बैठाती हैं कि आप खेती बाड़ी भी अच्छे से हो जाए, पशुपालन भी, और आपके घर के भी काम काज फर्क ना पड़े? आप इसके लिए क्या करती?
0: सुबह उठते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, पशुओं का ध्यान रखते हैं, उनको चारा जैसे डालना, फिर दूध निकालना, उस सारे काम को करने के बाद फिर खेतों पे चले जाते हैं,
1: अच्छा
0: खेती
1: अच्छा
0: का काम करते हैं, समय से निपटा के फिर घर आते हैं।
1: सब्जी की भी फसलें कर रखी, कोई भी सब्जी उगाते हैं तो हमें किन बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान ना हो?
0: समय पे जैसे तुड़ाई होती है उन्हें पानी लगाना है, उसमें जैसे खरपतवार उठे उसकी नड़ाई बुनाई भी
1: जी
0: करते हैं, सफाई, कोई कीट लगता है उसके लिए जैसे कि थोड़ा मोड़ा जैसे पाउडर वगैरह होती छिड़काव वाली दवाई तो ज्यादा नुकसान करती है, तो थोड़ा कुछ राख में मिला के वो लगा दिया, उससे सूड़ी उड़ी जो कीड़े हैं खत्म हो जाती हैं।
1: और आप भी अपने जो खेत में जैविक खादों का ही प्रयोग करती हैं?
0: जी मैम, हमने तो ढेंचा भी लगा रखा है मैम।
1: अच्छा अच्छा
0: आप गोबर वाली भी खाद हो जाती है उसको भी डालते हैं?
1: वो तो सबसे ही ज्यादा
0: जी
1: अच्छी मानी गई है गोबर की
0: जी
1: खाद। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मौसम बहुत आजकल उतार चढ़ाव पे
0: जी
1: रहता है
0: जी
1: कि
0: बहुत
1: कभी आंधी, कभी बारिश,
0: बहुत
1: कभी
0: इस
1: बहुत
0: समय
1: गर्मी। विजय कुमारी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बदलता मौसम है या मौसम का उतार चढ़ाव, ये खेती बाड़ी पे कितना असर डालता है? इससे क्या क्या नुकसान होता है या फायदा भी होता है? बहुत सी चीज ऐसी होती है जिससे हमें फायदा भी होता है।
0: अत्यधिक प्रदूषण की वजह से जो फसलों में बीमारी है उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: जी जैसे आंधी आ गई तेजी से और किसी की फसल पकी हुई जैसे,
1: जी
0: और
1: जी
0: आंधी अगर तेजी से आ गई या बारिश आ गई या पकी हुई फसल खड़ी है तब भी मौसम की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, इससे किसान को अत्यधिक नुकसान।
1: शशि कुमार जी, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि बदलते मौसम में जो हमने फसलें लगा रखी हैं उस पे कितना प्रभाव पड़ता है, अब आंधी का, बारिश का, ओलों का?
2: फसल तैयार होती है उस टाइम अगर बारिश पड़ जाए
1: हाँ
2: तो सारी फसल बेकार हो जाती है, हमारी किसान की मेहनत बिल्कुल बेकार हो
1: बिल्कुल
2: जाती है।
1: बेकार हो जाती
2: जी
1: है। बात करें गन्ने की, गन्ना भी जब बड़ा होता है तो आंधी आती है तो उसको गिरने के बहुत
2: गिर
1: चांस होते
2: जाता
1: हैं,
2: है, जड़ से उखड़ जाता है,
1: पूरा हो गया है ऊंचाई का, तो उन्हें क्या करना चाहिए?
2: गन्ना जैसे हमारा तैयार हो गया
1: जी
2: कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो गया तो उसको हम आपस में जूने से बांध देना चाहिए जिससे कि हमारा गन्ना आपस में भिड़ जाए तो उसका गिरना कम निश्चित हो जाता है।
1: खेत बचाओ अभियान चल रहा है तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ?
0: इससे सबसे बड़ा फायदा किसान को यह है, उत्पादन क्षमता है अनाज की और अन्य कई फसलें हैं वो बढ़ेंगी
1: हाँ
0: और मिट्टी में जो प्रदूषण है उसमें भी सुधार होगा। जैसे कि मान लो किसी के फसल में कोई किसी पोषक तत्व की कमी है, जांच होने के बाद पता चल जाएगा कि इसमें किस चीज की कमी है, फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
1: और कांति देवी जी आप बताइए, खेत बचाओ अभियान से क्या फायदा हो? अच्छा

0: शशि कुमार जी आप बताइए कि खेत बचाओ अभियान से क्या फायदा है?
1: खेत बचाओ अभियान से हमारी जो मिट्टी है वो सुरक्षित रहती है और हमारी फसल में बढ़ोतरी होती है
0: हाँ
1: जी, और किसान को ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त होती है इससे।
0: बिल्कुल। विजय कुमार जी आपसे ये जानना चाहते हैं, खेत और पर्यावरण का क्या संबंध है?
1: खेती और पर्यावरण का बहुत बड़ा गहन संबंध है। इन दोनों के बिना जो खेती करना असंभव है। अगर आपकी फसल पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, विपरीत है, तो आप फसल उत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर्यावरण सही नहीं है, संतुलित नहीं है, तो उससे जो है फसल उत्पादन में बहुत कमी आएगी।
0: कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों से क्या कहना चाहते हैं?
1: सबसे पहले यही कहने चाहेंगे कि भाई अत्यधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे अत्यधिक लगाएं और मृदा अपरदन पर रोक लगाएं, मिट्टी का खनन ना करें। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में। मिट्टी के खनन से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है,
0: बढ़
1: इससे
0: रही है।
1: उत्पादन में भी कमी आ रही है। और जो पेड़ पौधे हैं वो अत्यधिक लगाएं और जो अपने रासायनिक उर्वरक हैं उनको जो है सीमित उपयोग करें।
0: क्योंकि उपयोग तो करना पड़ता है रासायनिक खादों का भी, जैविक खादों पर निर्भर नहीं
1: निर्भर
0: रहते
1: नहीं
0: हैं
1: हो
0: किसान
1: सकते
0: साथी।
1: जी।
0: कुमार जी आप बताइए गांव के लोगों को या हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: जी, मैं गांव वालों से ये कहना चाहता हूँ कि खेती हमारी पूंजी है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
0: वो आता है कि आज हमारे जो युवा साथी हैं वो गांव से दूर होते जा रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि हमें गांव में रहकर ही अपनी खेती को बचाना है, अपने परिवार की तरक्की करनी है। खेती हमारी पूंजी है,
1: जी जी
0: उसको हम बचा के रखेंगे तभी तो हमें और आगे जाके
1: और
0: फायदा
1: फायदा
0: मिलेगा।
1: हो।
0: अंत में आप हमारे साथियों से क्या कहना चाहती हैं?
2: खेती बाड़ी को अच्छे से करना चाहिए, खेती बाड़ी में ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे पशुपालन है उसका भी ध्यान रखेंगे तभी खेती का होगा, खाद है वो भी खेती में डाला जाता है तो इससे खेती भी अच्छी रहेगी।
0: अंत में विजय कुमार जी आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर खेत सुरक्षित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या लाभ मिलेगा?
1: अगर खेत सुरक्षित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या? अच्छी खेती, अच्छा भोजन और बेहतर जीवन और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। और शशि कुमार जी आप बताइए आने वाली पीढ़ियों को कैसे सुरक्षित रखेंगे खेतों को, तो आने वाली पीढ़ियों को क्या लाभ मिलेगा
1: से
0: उससे?
1: हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी खेती और अच्छा भोजन और बेहतर जीवन मिलेगा।
0: और अगर हम खेती ही खत्म कर देंगे, हम खेती को अच्छे से नहीं, दिल से नहीं करेंगे,
1: जी,
0: तो हमारा जीवन नहीं सुरक्षित
1: जीवन
0: रहेगा।
1: हमारा नहीं चल पाएगा बस।
0: कांति देवी जी, शशि कुमार जी और विजय कुमार जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।
1: धन्यवाद। अबे हमारे भैया बहन सुन रहे कृषि गोष्ठी, खेत बचाओ अभियान, मृदा की सेहत सुधारें। प्रतिभागी थे शशि कुमार, कांति देवी, विजय, और संचालन कर रही थी बहन क्षमा सक्सेना। और देखो पूनम बहन, अब हमारे पास कमेंट भी आए गए हैं हमारे भैयन के लोकगीत की फरमाइश के, तो पढ़ दो नाम।
3: हाँ भैया, जे हैं कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति। और जे भैया हैं संजय सिंह बक्सेना दातागंज बदायूं से हैं, विमल ठाकुर, सरता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज।
1: और हमको फरमाइश मिली है ग्राम दूने नगर जनपद बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया और उनके परिवार की।
3: और भैया जी हैं ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से, विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव। और हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़। और भैया हैं गंगा सिंह रावत, इनने अपने घर के नाम ना लिख के भेजे हैं भैया। और जी हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, इन सब भैया बहनन की पसंद पर सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: तो पूनम बहन आपने भैया बहनन को बताइए रही, गाने के माध्यमों से बताइए रही कि मिट्टी की जांच करवाओ और वह कितनी जरूरी है, और अब बता दो बस सवाल को जवाब जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो।
1: भैया सवाल को जवाब तो बता देंगे, लेकिन हमारे बहुत से भैया ऐसे हैं जिन्होंने आज जा सवाल को जवाब कमेंट्स करो है।
0: तो देखो पूनम बहन, कमेंट की बात तो जाएगी, जो सवाल है ऐसे हो कि खुशी वालू हो, और हमें सबसे पहले सवाल को जवाब भेजू है नोखेलाल भैया ने, और हमें भेजू है ताज अंसारी जी ने, भागवत चौबे लाडला जी ने,
1: हाँ भैया, और हैं दिनेश वर्मा जी, रिगनी छत्तीसगढ़ से हैं भैया ये तो।
0: अच्छा
1: हाँ, और ये प्रवीण चौहान हैं, और आसिफ चौधरी आस, और ये हैं भैया बक्सेना दातागंज बदायूं से विमल ठाकुर। तो इन सब भैया बहन ने तो सवाल को जवाब सही बताओ ही है, लेकिन घर के हुए एक बार बता देता है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हमारे बहुत से भैया बहन तो ऐसे हैं जो कमेंट्स ना कर पाए, उनने अपने लिख कर धल्लो हो।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो भैया बहनों, आज को सवाल हो वो हो पीएम किसान।

0: सम्मान निधि की 23वीं किस्त कब आने वाली है? तो जाको जवाब है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को आने वाली है।
1: देखो बड़ी खुशी की बात है और हमारे भैया बहन इस समय और ज्यादा खुश इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि धान की रोपाई चल रही है तो पैसा की जरूरत भी काफी है और ऐसे समय में हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वे फलीभूत होती हैं और लाभ पहुंचाती हैं किसान भैयन को, तो उनकी खुशी चौगुनी हो जाती है।
0: हाँ भैया वो तो ही जाती है और हमारे भैया बहन को जरूरत भी होती है कि उनके लिए तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत काम खेती में चल जाता है जेई रुपया से।
1: बिल्कुल, अब जब बताबो पूनम बहन की सवाल को जवाबो ही गो, कृषि गोष्ठियों सुनवाई रही आपने, चर्चा कर ली, अब आज के कार्यक्रम की नसीहत का है?
0: भैया आज के कार्यक्रम से तो जय नसीहत मिलती है कि जो हमारे किसान भैया बहन हैं वे अपने खेतन में अधिक से अधिक जैविक खाद लगावें।
1: तो देखो भैया बिल्कुल सही बात है, सरकार की जो योजना चल रही है 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान बाको हम साकार कर रहे हैं जब आज से, क्योंकि अगर हम आज खेत की रक्षा ना करेंगे, मिट्टी की रक्षा ना करेंगे, तो कल जो हमारे बालक हैं वे खेती ना कर पाएंगे। और हमारा देश देख रही हूँ पूनम बहन कितनी बड़ी आबादी वालों देश है, ऐसे में हमें अनाज उत्पादन तो करने ही करने हैं।
0: हाँ भैया वो तो करने हैं और हमें उम्मीद है हमारे सब भैया बहन करेंगे भी और फायदा भी उठावेंगे और वे अपने काम धंधे तो करते ही हैं लेकिन बाकी संग संग स्वास्थ्य को ध्यान भी उन्हें रखने हैं और सही रहने हैं और सही रह के ही कार्यक्रम भी सुनने हैं। तो भैया बहनों अब कार्यक्रम किसानवाड़ी में तो बिल्कुल समय समाप्ति की ओर है, तो कार्यक्रम से अपनी बहन पूनम
1: और अपने भैया रघु को देव अनुमति, भैया बहनों
0: राम
1: राम,
0: राम।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर, और अब समय हो चला है ग्राम जगत का।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में एक बार फिर सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है।
1: तो देखो पूनम बहन, आज हम चर्चा को जो विषय है वो है नशा नाश की जड़ है। तो जैसे जैसे युक्ति बता रही है, जा पूरा अर्थ सिद्ध कर दे रही है, नशा नाश की जड़ है।
0: हाँ भैया, बिल्कुल सही कही आपने।
1: क्योंकि हमारे भैया बहन अगर नशा करेंगे तो भी तरक्की कतई ना कर पाएंगे। और जा संबंध में हम लोग तो चर्चा करेंगे ही या करिए है, लेकिन जा ही विषय पे आज वार्ता भी तो है हमारे कार्यक्रम में,
0: हाँ भैया,
1: नशा मुक्त समाज आज की आवश्यकता। और इस विषय पर विस्तार से बता रही हैं सुश्री अनुष्का गुप्ता।
2: आज मैं आप सभी के सामने नशा मुक्त समाज आज की आवश्यकता विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान के पास अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल परिवार और अपने सपनों को पूरा करने का मौका हो तो क्या वो इन्हें खोना चाहेगा? मैं तो कहूँगी शायद नहीं। लेकिन हाँ, नशा एक ऐसी बुराई है जो धीरे धीरे इंसान से उसकी सेहत, खुशियाँ और उसका भविष्य सब कुछ छीन रहा है। कई बार तो ये देखने मिल रहा है कि 18 से कम उम्र के बच्चे भी इस नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। इसीलिए आज के समय में नशा समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से बन चुका है। देखा जाए तो शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन लोग लगातार कर रहे हैं।

0: हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी एक सर्वे करवाया जिसमें पता चलता है कि हर साल दुनिया में लाखों लोगों की मौत तंबाकू और शराब से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों कि नशा केवल एक आदत नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। और मेरे मन में एक सवाल आता है कि लोग नशा करते ही क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसके कई कारण हैं। कुछ लोग दोस्तों के दबाव में आकर नशा करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग तनाव, चिंता और असफलता से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। कई बार फिल्मों, सोशल मीडिया या गलत संगति का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, शुरुआत में लोग केवल इसे शौक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लत बनती जाती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, नशे के दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हैं। सबसे पहले यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही साथ फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां नशे के कारण होती हैं। यही नहीं, नशा व्यक्ति की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है। साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और अपने लक्ष्यों से भी भटकने लगता है। नशे का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये ऐसी चीज है कि इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार के सदस्य मानसिक तनाव में रहने लग जाते हैं, आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं, कई बार रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। अगर समाज की बात करें तो मैं आपको बता दूं, नशा अपराधों और सड़क दुर्घटनाओं का भी सबसे बड़ा कारण है। नशे की हालत में लोग कई बार ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसका नुकसान उन्हें ही नहीं दूसरों को भी उठाना पड़ता है। और इन सभी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जागरूकता, लोगों को नशे के नुकसान के बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। दूसरी बात, अच्छी संगति। कहा जाता है कि इंसान अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखता है, इसीलिए हमें ऐसे लोगों को साथ रखना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही युवाओं को खेल, संगीत, पढ़ाई और अन्य सकारात्मक कार्यों में भाग लेना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका ध्यान गलत आदतों की ओर नहीं जाएगा। और हाँ, किसी भी इंसान की जिंदगी में परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसे डांटने या छोड़ देने के बजाय परिवार को उसका साथ देना चाहिए। अगर जरूरत लगे तो डॉक्टर या नशा मुक्ति केंद्र जैसी संस्थाओं से भी आप मदद ले सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एक नशा करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता बल्कि अपने परिवार, समाज, सबको प्रभावित करता है। इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, नशा मुक्त समाज बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि आज हम सब पढ़ लिख रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ। ये बात जरूर ध्यान से सुनिए, नशा हमें कुछ समय के लिए खुशी का भ्रम दे सकता है लेकिन ये हमारे जीवन की असली खुशियों को हमसे दूर कर देता है। इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जीवन बहुत अनमोल है। इसे नशे जैसी बुरी आदतों में बर्बाद करने के बजाय हमें अपनी अच्छी आदतों जैसे पढ़ाई, खेल, कला और समाज की भलाई में लगानी चाहिए। अगर आज का युवा नशे से दूर रहेगा तो कल का भारत और अधिक मजबूत स्वस्थ बनेगा। एक स्वस्थ, सुरक्षित और प्रगतिशील समाज बनाना है तो हमें नशे जैसी बुराइयों से दूर रहना होगा और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। हम सभी मिलकर आज ये संकल्प लें कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। नशे को कहो ना, स्वस्थ जीवन को कहो हाँ। नशा मुक्त हो हर इंसान, तभी बनेगा मजबूत हमारा हिंदुस्तान।
1: भैया बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता नशा मुक्त समाज आज की आवश्यकता। वार्ताकार थी सुश्री अनुष्का गुप्ता। तो आप सबने जा तो सुनी है ही, लेकिन एक बात है कि हमें पता है कि आप सब इतने समझदार हो कि ऐसी कोई काम ना करोगे जिससे आपको और आपके परिवार के सब लोगों को परेशानी हो।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन भैया एक बात है कि हमारे भैया बहन समझदार बहुत है कि देखो लोग गीत सुनने के लिए पहले से पहले कमेंट्स कर देता है।
2: हाँ, भैया बहन को इंतजार रहता है कि वार्ता होगी, बाके बाद गीत सुनेंगे। तो हमें फरमाइश मिली है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह की, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद से।
1: और जी हैं धनौरी।

0: सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह की ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद से।
1: और जी हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी नौसार सलमानी, बेबी आलिया अयान बाबू।
0: और प्रदीप कुमार जी लिख रहे हैं कि हमें तो नशा सिर्फ आकाशवाणी बरेली का है। तो प्रदीप कुमार जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। हाँ, ये बात सही है कि संगीत गीत ये प्रेम से जुड़ जाते हैं, तो ये भी एक तरह का नशा होता है। और ये एक अच्छा नशा है क्योंकि यहाँ से सूचना, मनोरंजन, समाचार सब आपको मिलते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे ऐसे ही कार्यक्रमों से।
1: और जी हैं आजाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही और महराज जहां।
0: साथ ही साथ हमसे जुड़ चुके हैं कस्बा क्यूलड़िया, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू, वेदपाल और संजीव।
1: और भैया जी हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुविया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी, प्रांजल राय।
0: और हमको हमसे जुड़ चुके हैं कमेंट के माध्यम से मसरूर हसन जी, गांव कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से।
1: तो इन सब भैया बहनों की पसंद पर सुनवा देते हैं जो लोकगीत।

0: तो पूनम बहन अब देखो कतई समय ना बचू है, और भैयन को आपने खूब संदेश भी दे दो कि नशा कतई ना करने हैं।
1: हाँ भैया,
0: तो आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया रघु,
1: और अपनी बहन पूनम को दो अनुमति।
0: भैया
1: भैया बहनों
0: बहनों राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। खोई व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। आप हैं कुमारी अनम वी, पुत्री बबलू खां, ये ग्राम मुरारपुर थाना भोजीपुरा बरेली की निवासी हैं। इनकी आयु 22 वर्ष है। चेहरा गोल बारंगे हुआ है। ये 14 मई 2026 से लापता हैं। इन्होंने सफेद सूट व पीला स्टॉल कत्थई रंग का बुरका पहना हुआ है। इनसे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए थाना अध्यक्ष थाना शाही जनपद बरेली से संपर्क करें। खोई व्यक्ति की सूचना के इसी क्रम में आप हैं सोनू, पुत्री श्री प्यारे, आप मुजियाना जिला बदायूं की निवासी हैं। इनकी आयु 36 वर्ष है। ऊंचाई 5 फुट 5 इंच। चेहरा गोल व रंग गेहुआ है। इनके चेहरे पर चोट का निशान है। ये 8 मई 2026 से लापता हैं। इन्होंने पैंट व शर्ट पहनी हुई है। इनसे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी बरेली से संपर्क करें। इसी क्रम में एक और नाम है गौरव का, पुत्र राजेश कुमार, आप ग्राम मामू पोस्ट गोरहा थाना कासगंज के निवासी हैं। इनकी आयु 19 वर्ष है।

ऊंचाई 5 फुट, इकहरा मजबूत जिस्म, गोल चेहरा व रंग सांवला है। इनकी नाक पर मस्सा है। इन्होंने सफेद शर्ट, हरी लाइन वाली और पजामा पहना हुआ है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी बरेली से संपर्क करें।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMsuryaghar.gov.in पर।
7: घर सूर्य घर।
0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

0: ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
1: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ताराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही हैं। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाली फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली, पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए, यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। आगरा में कल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित 21 ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है।

0: एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और विरासत के समन्वय का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इसी क्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर शैलेंद्र तोमर ने मेरठ में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के बाद समाज की सहभागिता जुड़ने से परिदृश्य बदला है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज की भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि उसके पूर्व रेलवे स्टेशनों का जो परिदृश्य हुआ करता था प्लेटफार्म गंदगी से भरे पड़े रहते थे, लेकिन जब माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा आह्वान किया गया समाज की सहभागिता इसमें जुड़ी, आज रेलवे स्टेशनों का दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यनाथ, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत आज लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के बच्चों का पोषित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता बताई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स MSME फोरम और SME वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये रात्रि के 7:31 और 37 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला बरेली।
1: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
0: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू,
2: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला बरेली।
1: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फालिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
0: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
1: 9837000048।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं बरेली के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा जी, और आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप हमें 0581-251-7200 पर कॉल करके अपनी समस्याओं और बीमारी का समाधान हमारे विशेषज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर एक बार और नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 0581-251-7200। आज का विषय है डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी में नया क्या, शंकाएं एवं समाधान। तो श्रोताओं, हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं और इंतजार करते हैं आपकी कॉल का। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, जैसा कि एक बहुत चर्चित विषय है डायबिटीज, हर आजकल तीसरे चौथे व्यक्ति में डायबिटीज की समस्या देखने में आती है, तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये डायबिटीज या शुगर क्या है।
4: देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज का मतलब है ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना
3: जी।
4: खाली पेट 110 से ज्यादा शुगर कभी किसी की नहीं होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद 140 से नहीं होनी चाहिए। लेकिन डायबिटीज हम तब कहते हैं जब शुगर 123 से ज्यादा खाली पेट हो और 180 से ज्यादा खाने के बाद हो। तो 123 और 180 से अगर ज्यादा किसी की शुगर है खाली पेट और खाने के बाद, तो उसको ये माना जाएगा कि इनको शुगर या मधुमेह की बीमारी है।
3: तो डॉक्टर साहब, ये जो डायबिटीज या शुगर की बीमारी है जैसा कि आपने बताया, तो ये क्यों हो जाती है? आजकल जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसके मुख्य कारण क्या है?
4: जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने का जो मेन कारण है वो है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। मैं समझाता हूँ आपको।
3: जी जी।
4: हो ये रहा है कि जो पहले शुगर के मरीज हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो ज्यादातर पेशेंट अल्प आयु में ही दिवंगत हो जाते थे। और अब मेडिकल साइंस बढ़ने के साथ साथ शुगर के पेशेंट भी पूरी दीर्घायु होते हैं, पूरी अपनी लाइफ जीते हैं। तो इसीलिए जब सर्वाइवल बढ़ गई है तो टोटल शुगर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी ये बात है कि पहले जो शुगर या दूसरे इमेच्योर बच्चे होते थे, वो अगर कोई बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो जाए, 8 महीने से पहले पैदा हो जाए, या 2 किलो से कम का हो जाए, तो वो उसका बच पाना मुश्किल होता था। अब मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से अब तो 800 ग्राम और 1 किलो तक के बच्चे, और जिनको मेल नरिश या लो बर्थ वेट बेबी भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण हम जानते ही हैं कि लाइफस्टाइल हम लोग का सिडेंट्री हो गया है। उसका मतलब ये है कि हम लोग मेहनत कम करते हैं और गरिष्ठ भोजन ज्यादा ले रहे हैं। इसकी वजह से ये एक सिंगल मोस्ट कारण है जो शुगर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जाता है कि इंसुलिन इफेक्टेड होता है इस चीज में, तो क्या होता है, हमारी बॉडी इंसुलिन बनता नहीं है या कम बनता है, या क्या स्थिति रहती है इसकी?
4: देखिए, हम लोग शुरू करते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। मेन बात यह है कि अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि जी मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूं, फिर भी मेरी शुगर बढ़ी रहती है, ऐसा क्यों होता है? दरअसल अगर देखा जाए तो शुगर बढ़ती नहीं है, लेकिन शुगर कम होना बंद हो जाती है। उसके माने ये हैं, जब आप भी कोई भोजन लेते हैं या कोई भी खाना खाते हैं, तो अल्टीमेटली टूट के वो कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज में चेंज होता है और आपके डाइजेशन सिस्टम से ब्लड में चला जाता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स है, यानी कि नाड़ियों से शुगर को निकल के मांस के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जाना होता है। और जब ये ब्लड से निकल के कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता है, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। दरअसल जहां शुगर पहुंचाई जानी है, मसल्स तक, कोशिकाओं तक, आपकी मांसपेशियों तक, वहां पे शुगर

0: नहीं पहुंचती है, ब्लड में बड़ी रहती है, इसलिए ब्लड में शुगर बढ़ जाती है और शुगर होने के बावजूद आपका शरीर थका हुआ महसूस करता है, ऐसा लगता है जैसे मांसपेशियों को भोजन नहीं मिला।
1: डॉक्टर साहब, कई बार जैसे चूंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है, इसके प्रारंभिक लक्षण पता नहीं लगते हैं, तो किसी व्यक्ति को यह जानने के लिए कि उसे शुगर है या नहीं, तो कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, क्या उसे करना चाहिए?
0: देखिए, वैसे तो अब इतना प्रचलित हो चुका है, सभी लोग को मालूम है कि बार बार पेशाब आने पे, बार बार इन्फेक्शंस होने पे, पैरों में सुन्नपन होने से या यूरिन में या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने से सब लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उनको शुगर है। शुगर जानने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर रात में कई बार पेशाब आ रही है, गदूत की समस्या नहीं है और कई बार पेशाब आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि शुगर है। जो क्लासिकली 3P बोले जाते थे, थ्री
1: जी
0: पी का मतलब है, पहले पी का मतलब है पॉलीयूरिया, मतलब पेशाब का बार बार आना। दूसरा है पॉलीडिप्सिया, यानी कि प्यास बहुत ज्यादा लगना, डिहाइड्रेशन होना। और तीसरा होता है पॉलीफेजिया, मतलब कि भूख बहुत ज्यादा लगना, खाना खाना उसके बावजूद थका थका सा महसूस करना। तो 3P से हम लोग डायग्नोसिस बना लेते हैं डायबिटीज की।
1: अच्छा, डायबिटीज के भी कई और प्रकार होते हैं कि
0: जी
1: एक
0: हाँ, देखिए क्लासिकली जो हम लोग को पढ़ाया जाता था कि दो प्रकार की डायबिटीज है, टाइप 1 और टाइप 2।
1: जी
0: अब जो नया ये है कि इसमें कई प्रकार की डायबिटीज हो गई हैं, एक 1.5 की भी डायबिटीज आ गई है। तो जो डायबिटीज टाइप 1 जो पढ़ाई जाती थी क्लासिकली, उसकी परिभाषा ये थी, ऐसे लोगों में, बच्चों में इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स पेनक्रियाज में, हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन पेनक्रियाज या अग्नाशय जिसे कहते हैं, उसके बीटा सेल्स में बनती है। तो जब एलर्जी की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जब किसी के बीटा सेल्स खत्म हो जाएं, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। आमतौर पे ये पतले लोगों में, स्किनी लोगों में और यंग एज में हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज होती है जिसमें ज्यादातर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके माने ये हैं कि इंसुलिन होती तो है लेकिन उसका असर कम हो जाता है और थोड़े बहुत पैनक्रियाटिक सेल भी कम हो सकते हैं। तो ज्यादातर ये देखा जाता था कि जो बचपन में होती थी वो टाइप 1 डायबिटीज होती थी और उसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी, और जो बड़ी उम्र में होती थी वो टाइप 2 डायबिटीज होती थी और जिसमें इंसुलिन की जरूरत बहुत जल्दी नहीं पड़ती थी और दवाइयों से काम चल जाता था। अब एक नई किस्म की डायबिटीज निकली है 1.5, या जिसको MODY कहते हैं,
1: जी
0: मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट डिजीज डायबिटीज ऑफ द यंग। इसमें ये देखा गया है कि यंग एज में ही उनकी शुगर के लेवल बढ़ने लगते हैं और पेनक्रियाटिक सेल्स, यानी कि जो इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन ये ऑटो इम्यून से नहीं होती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये फैमिलीज में रन करती है। मैं आपको
1: ओके
0: बता दूं कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो अनुवांशिक नहीं है, वो अगर किसी के पिताजी को है तो जरूरी नहीं है कि बेटे को होगी। लेकिन जो टाइप 1.5 डायबिटीज है, डेड डायबिटीज है, ये ज्यादातर फैमिलियल होती है और फैमिली में कई सारे लोगों को होती है। और इससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये टाइप 2 है कि टाइप 1 है, लेकिन इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है, एक टेस्ट करके पता चलाया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने इसके प्रकार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, और इसके अगले चरण में हम चलते हैं कि इसकी दवाइयाँ वगैरह किस तरह से इसका इलाज किया जाता है।
0: इससे चलने से पहले मैं आम जनता के लिए एक बात और
1: जी
0: बता दूं
1: बिल्कुल
0: कि जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है वो है ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज, मतलब कि इसमें व्यक्ति जो है मोटा होता है थोड़ा, और मोटा होने की वजह से इनके अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। ऐसे लोगों को अगर आप जांच करेंगे तो इंसुलिन का लेवल काफी हाई होगा, मतलब इंसुलिन की कमी नहीं होगी, फिर भी क्योंकि इनका शरीर मोटा है इसलिए वो इंसुलिन उनके लिए नाकाफी होती है। और दूसरी तरह की बताया जाता था कि दुबले शुगर के मरीज, ज्यादातर इन मरीजों में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, मोटे लोगों में इंसुलिन बड़ी होती है, इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है, ये माना जाता था। तो फिर हम लोग बताएं, जैसा कि आपने पूछा कि क्या इंसुलिन की जरूरत पड़ती है,
1: जी
0: तो इंसुलिन की जरूरत टाइप 1 डायबिटीज में, जिनके अंदर इंसुलिन बन नहीं रही है, उनको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। आमतौर पर ये कम उम्र के पतले दुबले बच्चे होते हैं जिनको इंसुलिन लेनी होती है, अगर वो इंसुलिन नहीं लेंगे तो उनके खून में शुगर की चाशनी बन जाएगी। ये सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, यानी कि कीटोन फॉर्मेशन हो जाती है जिससे वो बेहोश हो सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत होती है, टाइप 2 का दवाइयों से काम चल जाता है, अगर बहुत आगे बढ़ जाए तो फिर इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपको अभी डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि हमारे एक श्रोता लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखिए क्या कहना चाहते हैं।
0: नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमेश बोल रहा हूँ, कृपया मधुमेह से संबंधित सवाल पूछिए।

0: चक्रवर्ती, गुजरात से बोल रहा हूँ। वैसे मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ।
1: जी बहादुर जी, आपकी जय हो। सवाल पूछिए।
0: हाँ, सवाल है सर के, जैसे मतलब आदमी को कैंसर हो जाता है तो कोई बोलता है कि बरेली में सबसे बड़ा अस्पताल है, कैंसर का क्या उसका इलाज क्या है?
1: बहादुर जी, आज हम लोग शुगर, मधुमेह, डायबिटीज पर बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, सर तो एक 80 साल का एक आदमी है,
1: जी।
0: उसको शुगर हो गया है, तो एक गांव वाला आदमी बोलता था कि जो बकरी की होती है ना उसमें गाड़ दो, तो क्या आप बताइए कि उसकी बात माने कि आप क्या कुछ बताओ?
1: 80 साल के व्यक्ति को शुगर हो गई है।
0: हाँ।
1: अच्छा, क्या वो मोटे हैं या पतले हैं?
0: बहुत ही मोटे हैं सर वो तो।
1: देखिए सुनिए, पहली बात तो ये समझ लें कि इस तरह के देसी टुटके बहुत हर बार सुनने में आते हैं। कुछ समय पहले काशीपुर के इलाके में एक जनाब थे जो नाक में दवाई डाला करते थे। आजकल एक किसी जनाब की सुनते हैं जो शाहजहांपुर के आसपास जो चूरा खिला देते हैं। इस तरह के देसी टुटके देने वाले लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भाई साहब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया मरीजों का सर्वनाश करना बंद करें। बहादुर जी, आप ये बात समझ लें कि जो ये जो आपके 80 साल के दोस्त हैं, इनसे कहिए अपना वजन कम करें और शुगर की गोली खा लें। इनको शुगर 80 साल में वजन बढ़ने की वजह से हुई है, और बकरी को बांध देने से या सदाबहार के पत्ते खा लेने से या करेले का जूस पी लेने से कोई भी भला होने वाला नहीं है। अब आप किसी शताब्दी में जीते हैं, नए भारत की बात करिए, ये पुराने जमाने के टोटकों से दूर उठ जाइए। ठीक है बहादुर जी?
0: हाँ, सुन लिया सर।
2: ये थे हमारे श्रोता। तो डॉक्टर साहब, हम आगे चलते हैं। हमारी बात हो रही थी कि इंसुलिन की समस्या जो उत्पन्न हो जाती है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसको संतुलित करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, दवाइयां या इंजेक्शन से?
1: देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, शुगर के मैनेजमेंट का सबसे मूल मंत्र क्या है?
2: जी,
1: शुगर के मैनेजमेंट का मूल मंत्र ये है कि मेरा काम ये नहीं है कि एक गोली सुबह दे दी, एक गोली शाम को दे दी, खाली पेट आपकी शुगर नॉर्मल आ गई, खाने के बाद की शुगर नॉर्मल आ गई। दरअसल आपकी शुगर 24 घंटे 110 और 140 के बीच में रहनी चाहिए।
2: जी,
1: मैं अक्सर इस बात का लोगों को एग्जांपल देता हूं कि आप ऐसे मानिए कि जैसे शुगर एक जंगल है और उसके अंदर एक रास्ता है, जो पगडंडी है, जो नीचे से निकल के जाती है। जब तक आप रास्ते में रहेंगे तब तक आप भटकेंगे नहीं और जंगली जानवर आपके पास नहीं आएंगे। उस रास्ते की एक किनारा है 110 शुगर और दूसरा किनारा है 140 शुगर। देखिए, सिर्फ 30 ग्राम के अंदर आपको अपनी शुगर रखनी है। तो जैसे कि जनाब ने कहा कि सदाबहार के पत्ते या करेले का जूस या जामुन का, तो कई सारी जो हैं सब्जियां, कई सारी औषधियां ऐसी हैं जो शुगर को कम करती हैं। और जो है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता, आप अगर कोई सदाबहार के पत्ते खाएं या कोई जड़ी बूटी खाएं तो आपको पता नहीं होगा कि कल आपने कितनी खाई थी और आज आपने कितनी खाई है। ये जो हमारी एलोपैथिक की दवाइयां हैं, ये कोई मंगल ग्रह से तो आई नहीं है।
2: जी बिल्कुल,
1: ये भी दरअसल इनका पहला केमिकल जो है वो इन्हीं जड़ी बूटियों से और फल फूलों से निकला हुआ है। फर्क इतना है कि अब वो कंट्रोल मात्रा में लैब्स में बनाई जाती हैं। तो अगर आपको शुगर अपनी इतनी पतली रेंज में रखनी है 110 से 140, तो आपकी दवाइयां बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। देखिए, हम फिर से बताते हैं कि अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे भी आपकी शुगर 140 के ऊपर चली गई तो फिर वो पूरी कंट्रोल में नहीं है। और अगर कंट्रोल में नहीं है तो शुगर का एकदम से, कई लोग होते हैं साहब मेरी शुगर तो 200 चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो अपने आप सिर्फ खाना रोक के मैंने सिर्फ अपनी शुगर कर ली, 200 चल रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो शुगर जो है, हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि शुगर का नुकसान आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। कोई दीवार गिरानी हो, कोई घर गिराने हो, तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, सब्बल या बड़े वो हथौड़े लेके उनको तोड़ दो, और दूसरा तरीका छोटी छैनी से खिटखिट खिटखिट खिटखिट रोज करते रहो। तो अगर आप छोटी छैनी से मार करेंगे तो वो साल भर के अंदर एक दीवार टूटेगी। तो शुगर भी ऐसे ही काम करती है। अगर आपकी शुगर खाना खाने के बाद 140 के ऊपर है और एक साल तक चलती है तो आपके पैरों में सुनपन और झंझनाहट होना शुरू हो जाएगा, और अगर 2 से 3 साल तक चलती है तो पैरों में संवेदना चली जाएगी, पैर में छाले पड़ेंगे तो ठीक नहीं होंगे। अगर 4 साल तक चलती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा,

0: चलने फिरने में सीने में भारीपन या जिसको अंजाइना या हृदय रोग कहते हैं वो हो जाएगा। और 5-6 साल तक भी अगर शुगर सिर्फ 160 से ऊपर चली, 200 की बात नहीं कर रहे हम, 140 160 के ऊपर चली, तो हृदय रोग होने के, हृदयाघात, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये 6 साल तक चली तो फॉलेज, पैरालिसिस, स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता 8 से 10 साल चली तो गुर्दों के अंदर डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगा। 11 से 12 साल के बाद आंख के पर्दे के पीछे मिश्री जैसे बन जाती है, जिससे आंख के पर्दे के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और आंख की रोशनी भी जा सकती है। तो जब शुगर का इलाज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने एक गोली दे दी और आपको कह दिया ठीक हो गया।
1: जी बिल्कुल,
0: आज से शुगर का इलाज करना शुरू किया तो आज से 12 साल बाद आपकी आंखों की रोशनी में कोई दिक्कत ना हो, आज से 10 साल बाद आपके गुर्दों में कोई परेशानी ना हो, आज से 8 साल बाद आपको हार्ट की दिक्कत ना हो, आज से 3 साल बाद आपके पैरों में झंझनाहट ना हो, ये सब चीजें शुगर का इलाज करने से पहले दिन से ही सुनिश्चित करनी होती है। उसके माने ये हैं कि हमें शुगर एक बहुत महीन रेंज में, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए पहले एक 3 महीने वाली शुगर की जांच किया करते थे।
1: जी
0: जैसे कहते थे HbA1c, वो पूरा 3 महीने का एवरेज बता देती है। लेकिन अब आज की तारीख में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चमत्कारी तरीका निकला है, जिससे ना सिर्फ शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी दवा से शुगर कितनी कम हो रही है और क्या खाने से शुगर कितनी बढ़ रही है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, CGM। उसके माने ये हैं, एक 1 रुपए के सिक्के के बराबर का एक प्लास्टिक का स्टिकर हम आपकी बांह पे लगा देते हैं और उसके आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो आपको पूरे 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड की आपकी शुगर कितनी है वो बता देता है। और इसमें अब हम ये करते हैं कि आपको एरिया अंडर कर्व, मतलब कौन सा एरिया, कौन से ज्यादा टाइम आपका वो 140 के नीचे रहना चाहिए, सेफ जोन में रहना चाहिए। और इस तरह से हमने कई सारे मरीजों में ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करी और उसे कई बातें पता चली, कई बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली।
1: जी
0: जानते हैं, पहले 50 लोगों के जो CGM लगाया तो हमारे को सिर्फ इतना ही करना था, ये समझ में आ गया कि उनकी दवाई जो है सिर्फ उसकी टाइमिंग चेंज करनी थी। मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादातर मरीज जो हैं आजकल ट्रिपल ड्रग या डबल ड्रग कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब जो शुगर की दवाइयां होती हैं वो 5-6 प्रकार की होती हैं। सबसे कॉमन होती है मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड,
1: जी
0: जो लीवर से शुगर को बनाने को रोकती है। ये सबसे बढ़िया दवा है और सबसे पहले यही शुरू करी जाती है, पर इसका जब दवाई दो इसका असर आने में 1 घंटा लगता है। प्रकार से दूसरी दवाइयां होती हैं सल्फोनाइल यूरिया, और उनका भी असर आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसके माने ये हैं कि अगर आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं और खाने के तुरंत बाद आपकी शुगर बढ़ रही है, तो ये आपको दवाई कम से कम 1 घंटा पहले लेनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि खाना टेबल पे रखा और गोली खा ली, तो ये देखा ये गया कि खाना खाने के बाद, यानी कि पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, खाना खाने के बाद सबकी शुगर एकदम से बढ़ जा रही थी और दवाई का असर आते आते 1 से 1.5 घंटा चल रहा था, 1.5 घंटा 2 घंटे तक लोगों की शुगर बढ़ी हुई चल रही थी। आपने अक्सर देखा होगा मरीज, शुगर के मरीज कहते हैं कि खाना खाने के बाद मेरा सिर घूमने लगा, मुंह सूखने लगा, कमजोरी से लगने लगी। वो ऐसा इसीलिए होता है कि उनकी दवाई का प्रभाव शुरू होने में टाइम लग जाता है, लेकिन जो खाना खाया वो तुरंत ही तेजी से शुगर बढ़ाने लगता है। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, शुगर को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है। ये सेंसर आप अपने हाथ पे लगा लें, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज खाने से। CGM लगाने से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली, वो पता ही चली। हमने एक आदमी को जो है लस्सी पिलवाई
1: जी
0: और एक आदमी को कोका कोला। आप समझ सकते होंगे कि शुगर किसकी ज्यादा बड़ी होगी,
1: कोका कोला वाले की।
0: कोई चलिए ये तो आपने बचाना। अच्छा लस्सी वाले की क्यों नहीं,
1: शुगर कम रहती है उसमें।
0: नहीं
1: जी,
0: शुगर देखा जाए तो लस्सी में भी उतनी ही थी
1: जी
0: जितनी कोका कोला में थी। वो इसलिए क्योंकि जो दूध और दही जो होता है वो शुगर का एब्जॉर्ब करने को डिले कर देते हैं, और कोका कोला या फिर किसी भी कोल्ड ड्रिंक में वो तो फ्री एम्प्टी कैलोरीज होती है और कुछ होता ही नहीं है चीनी के जूस के अलावा। तो इस बात पे भी निर्भर करता है कि कोई चीज आपने खाई। देखिए हमने कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक संतरा खा लीजिए आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसी संतरे का जूस आप पियेंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। उसके माने ये हैं, ये नया कॉन्सेप्ट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कौन सी चीज़?

0: चीज आपने खाई तो वो कितनी तेजी से शुगर रिलीज कर रही है। अब फिर वापस आते हैं, ये जो नया तरीका है सीजीएम कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का, मेरे हिसाब से ये एक मिरेकुलस चमत्कारिक तरीका है जिससे शुगर के कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। और उसे पता चल गया कि सिर्फ एक सीजीएम अगर आप कर लें 15 दिन का, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि दवाई आपको कब खानी है और क्या चीज आपको नहीं खानी है और क्या चीज आपको कितनी खानी है। मेरे हिसाब से शुगर का सबसे बढ़िया इलाज वही होगा जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन,
1: जी
0: यानी कि आप अपना खाना पीना संचित कर लें और उसको कंट्रोल करने में आपको यही करना है कि कब कितना खाना है और किसके साथ खाना है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, चूंकि बात इलाज की चल रही है तो ये इलाज कब तक करवाना पड़ता है? कभी ऐसा हो सकता है कि दवाइयां रोक दी जाएं इसकी कभी आके, या हमेशा खाना पड़ता
0: देखिए,
1: है
0: सबसे ज्यादा कॉमन कॉज शुगर होने की है
1: जी?
0: मोटापा होना,
1: जी
0: और जिसको कहते हैं कि ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज, है ना। तो अगर आप अपना वजन कम कर लें और तो जो है वो आपका अपने आप शुगर की दवाइयां बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। और अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं,
1: जी
0: मतलब वैसे लोग कम ही होते हैं, इन लोगों को जब तक इंसुलिन शरीर में बनने लायक कोई विधि ना आ जाए, कोई ऐसी ट्रीटमेंट ना आ जाए जिससे इनके शरीर में इंसुलिन बनना
1: जी
0: स्टार्ट हो जाए, तब तक उनको इंसुलिन लेनी होगी।
1: तो शुरुआती स्टेज में अगर हम लोग कोशिश करें तो इसको रोका जा सकता है, कि आगे बढ़ने से, मधुमेह को बिगड़ने से आगे रोका जा सकता है
0: मैं फिर दोहराता हूं
1: जी?
0: कि अगर आप अपना वजन कम रखेंगे,
1: बिल्कुल
0: आपकी शुगर अपने आप ठीक कंट्रोल में आ जाएगी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या, पूरे विश्व में शुगर होने का सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी है,
1: जी
0: मतलब कि मोटापा है। जो मोटे लोग होते हैं, शिथिल होते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, उनमें शुगर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो अगर आप बिना दवाई के अगर अपनी दवाई बंद करना चाहते हैं, तो आप मेहनत करना शुरू करिए। आपके शरीर में वसा नहीं, फैट नहीं, मसल्स होनी चाहिए। आपके दिनचर्या में 45 मिनट 1 घंटे की एक्सरसाइज, व्यायाम या वॉक होनी चाहिए। और आपको एम्प्टी कैलोरीज जैसे कोल्ड ड्रिंक्स,
1: जी
0: जूसेस, इनसे बचना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी प्रकार के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि फलानी जगह से भभूत खा के ठीक हो जाएंगे या नाक में दवाई डाल के ठीक हो जाएंगे, या जैसा कि बहादुर जी ने कहा था कि बकरी की लेंडी बांध देने से। ये सब
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बताया आपने कि अनुवांशिक रूप से भी हमारी आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, तो ये इसकी कितनी संभावना रहती है कि अगर माता को डायबिटीज है तो आने वाले बच्चों को भी होगी, और इसकी रोकथाम के क्या उपाय
0: देखिए,
1: हो सकते हैं?
0: क्लासिकली ये बताया जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज और बहुत सारे जो क्लस्टर्स हैं टाइप 2 के, वो जेनेटिक नहीं होते हैं। उसका मतलब ये है कि शुगर दरअसल होती लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से है, वजन बढ़ने की वजह से, फैट बढ़ने की वजह से है। तो अगर मान लीजिए पिताजी पराठे खाते हैं और मोटे हैं और मेहनत नहीं करते हैं, तो चांसेस ये हैं कि बच्चे भी लगभग इसी तरह के होंगे, वो भी भोजन इसी प्रकार का करते होंगे। इस सेंस में एक परिवार की शुगर उनके बच्चों को भी हो सकती है, अगर वो भी वैसे ही मोटे हैं, वैसे ही काम नहीं करते
1: जी
0: हैं और उसी तरह का उनका भोजन है। पर एक दूसरी किस्म की डायबिटीज है, जो मैंने बताया 1.5
1: जी जी
0: डायबिटीज, MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग है। डायबिटीज जो है ये फैमिलियल होती है, उसका मतलब ये है कि ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि परिवार में अगर एक को है तो दूसरे को भी होती है, और इसमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है बीटा सेल्स में, जिसकी वजह से ये होती है। और ये लोग मोटे भी नहीं होते हैं, 1.5 टाइप ऑफ डायबिटीज ये फैमिलियल होती है। बाकी टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, अनुवांशिक नहीं होती है। टाइप 2 डायबिटीज, उसमें डायबिटीज होने की संभावनाएं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती हैं, लेकिन अगर दूसरी जनरेशन अपना वेट, अपना BMI, अपना एक्सरसाइज लेवल ठीक रखेगी, तो उन्हें डायबिटीज नहीं होगी।
1: एक चीज और देखने में आती है, जैसे कि जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उन्हें अक्सर डायबिटीज पाई जाती है, तो कई लोग अक्षम हो जाते हैं शारीरिक रूप से और वृद्ध हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा, या किसी
0: सर,
1: हाथ या
0: आपने अनजाने में ही
1: जी
0: एक
1: जी
0: इतना बड़ा वो जो कर लिया है, जो मेडिकल साइंस को समझने में इतने साल लग गए। ये जो डायबिटीज है, इसका नाम है MARD,
1: MARD
0: उसका मतलब है माइल्ड एज रिलेटेड डायबिटीज। ये जो होती है उम्र बढ़ने के साथ,
1: जी
0: जैसे मैंने कहा कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग 70-80 साल तो अमूमन जीते
1: जी
0: ही
1: रहे हैं जी
0: हैं,
1: जी
0: तो जो

0: एल्डरली लोग होते हैं उनमें ये डायबिटीज MARD होती है। इसकी खासियत ये होती है कि ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मतलब अगर शुगर थोड़ी सी है, 70 साल की उम्र में शुगर हुई है, तो आधी गोली एक गोली से काम चल जाएगा और वो सालों तक, 100 साल की उम्र तक भी एक ही गोली से काम चल जाएगा। बड़ी उम्र में डायबिटीज होना एक देखी हुई बात है, वो इंसुलिन के कम बनने की वजह से होती है और उसकी अलग क्लासिफिकेशन है, उसे MARD कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं फिर से दोहराऊं
1: जी
0: कि डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा कारण है वजन बड़ा होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, जीवन में मेहनत का ना होना। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बहुत सख्ती से करना है। इसके लिए मतलब शुगर कभी भी 140 के ऊपर ना जाए। जो लोग कहते हैं हमारी शुगर 200 चल रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, वो जान लें कि छोटी छेनी शुगर की उनको वार कर रही है और आज नहीं 3-4 साल के बाद उन्हें पता चलेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और तीसरा पॉइंट यह है कि शुगर को मैनेज करने का, खास तौर से आजकल की जो नई जनरेशन है जो अपने आप जिम में जाकर और हेल्दी फूड खाकर, ऑर्गेनिक फूड खाकर अपनी हेल्थ को मेंटेन करती है, उन लोगों के लिए कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, लगातार शुगर को रिकॉर्ड करते रहने का मोबाइल ऐप के द्वारा सबसे बढ़िया तरीका है। उसको लगाने के बाद आपको पता चल सकता है कि कब आपकी शुगर 140 के ऊपर गई, कब आपको क्या नहीं खाना है, कब आपको दवाई ले लेनी है। और चौथी बात, हर शुगर की दवाई उसका असर आने में कुछ टाइम लगता है।
1: जी
0: अच्छा, मैं फिर से एक सवाल बताऊं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे पास अक्सर ये लोग आते हैं, कहते हैं साहब मेरी शुगर वैसे तो ठीक है और खाना खाने के बाद 200-250 हो जाती है। अभी एक जनाब आए थे कि मैं जैसे ही खाना खाता हूं मुझे चक्कर आने लगता है और मेरा दिमाग कम काम करना शुरू कर देता
1: जी
0: है, बोलचाल की भाषा में ब्रेन फ्रीज कहते हैं। तो हमने उनकी ये पता किया कि वो जो गोली खाते थे शुगर की, उसका जब तक असर आता था तब तक उनकी शुगर 250-300 तक पहुंच जाती थी। तो ऐसे के लिए बहुत फास्ट एक्टिंग दवाइयां या जो एक खास किस्म की दवाइयां होती हैं जिनका असर 15 से 20 मिनट में आने लगता है, उस गोली को दे दिया ही लंच या डिनर में जाता है, वो खाना खाने से 20 मिनट पहले भी खा ले तो इनकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। और ये सारी बातें आप अपने उस ग्राफ पे, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के ग्राफ पे देख के समझ सकते हैं। मैंने बताया CGM करने के बाद ज्यादातर केसेस में हमने दवाई बिल्कुल चेंज नहीं करी, बस उनसे दवाई की टाइमिंग चेंज कर दी कि दवाई
1: ओके
0: आप 1 घंटे पहले खाइए, दवाई आप 15 मिनट पहले खाइए।
1: तो इस बारे में कि किस उम्र के बाद से जागरूक हो जाना चाहिए कि 30s लेटर 30s में कब से कि मॉनिटरिंग करने लगे हम लोग
0: देखिए,
1: शुगर
0: अगर
1: की।
0: आप शुगर से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी जवानी में ही 15-20 साल की उम्र से ही आपको अपनी आदतें इसी तरह से बना लेनी
1: लाइफस्टाइल में
0: चाहिए,
1: चेंजेस कर लेने
0: लाइफस्टाइल में
1: चाहिए।
0: चेंजेस
1: बिल्कुल
0: कर
1: हाँ
0: लेने चाहिए, फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। आपके दिनचर्या में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का व्यायाम होना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिम जाएं या स्विमिंग करें या हॉर्स राइडिंग करें या साइकिल चलाएं, आप रस्सी कूद सकते हैं, जीने पे चढ़ सकते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: गाड़ी साफ कर सकते हैं, कुएं से पानी निकाल सकते हैं, घर वालों का हाथ बटा सकते हैं और उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ये डायबिटीज जो आज घर घर में पनप रही है उससे बचने के और सही लाइफस्टाइल के माध्यम से उसे रोकने के उपाय बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं का जो हमारे कार्यक्रमों को इतना मन लगाकर सुनते हैं। उम्मीद है कि उन्होंने आज के कार्यक्रम से अपना ज्ञानवर्धन किया होगा और अपनी समस्याओं का समाधान किया होगा। कार्यक्रम के साथ हम फिर उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
2: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3: बरेली शहर का सबसे किफायती ICU, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन ICU,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
3: 9837000048।
5: अभी आप सुन रहे थे रेडियो हेल्पलाइन, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और अब आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
6: शिष्टाचार, भलाई परंपरागत जीवन मूल्य है। समाज की संस्कृति भिन्न हो सकती है और परंपरा भी भिन्न हो सकती है। जीवन जीने के मूल

भी भिन्न हो सकते हैं। शारीरिक बनावट सबको सहजता के मार्ग से एकदम एक रूपता में बनाए रखता है, यही हमारे संकल्पों और प्रतिमानों में स्थायित्व तो बनाता है, हमारे दृष्टिकोण विचार बनाते हैं और जीवन मूल्यों की रचना करते हैं। जीवन संतुलन के लिए व्यक्ति परक तथा समाज परक दृष्टिकोण हो सकता है। साहित्य सामाजिक संतुलन में समाज का दिशा निर्देशक हो सकता है और समाज का मानव स्वरूप भी बन सकता है। साहित्य वह सशक्त माध्यम है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, लोगों को प्रेरित करने का कार्य भी करता है। यह सत्य के सुखद परिणामों को रेखांकित करता है, असत्य का दुखद अंत कर सीख और शिक्षा प्रदान करता है। अच्छा साहित्य चरित्र निर्माण में सहायक होता है। साहित्य के मूलतः तीन विशेषताएं हैं, अतीत से प्रेरणा लेना, वर्तमान को चित्रित करने का कार्य करना और भविष्य का मार्गदर्शन कराता है। साहित्य मानव की आंतरिक विकृतियों और खूबियों को चिन्हित करता है। साहित्य का मूल तत्व सबका हित साधन है। मानव अपने मन में उठने वाले भावों को लेखनीबद्ध करके रचनात्मक ज्ञानवर्धक अभिव्यक्त रूप साहित्य प्रस्तुत करता है। साहित्य की पारदर्शिता समाज के नवनिर्माण में सहायक होती है। साहित्य समाज की उन्नति विकास की आधारशिला रखता है। एक प्रकार से साहित्य जीवन में सत्य को प्रकट करने वाले विचारों और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। जीवन मूल्यों पर आधारित साहित्य का जीवन दर्शन होता है, इसलिए परिवर्तनशीलता के कारण व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है। साहित्यकार समाज के मूल्यों को अपने साहित्य के अंतर्गत अंकित करता है और साहित्य उस समय के जीवन मूल्यों को धारण करता है, साथ ही नवीन मूल्यों से समाज को दिशा प्रदान करता है। साहित्य परंपरा से जुड़ा होने के कारण नई दिशा भी प्रदान करता है। साहित्य नैतिक मूल्यों से संघर्षरत रहता है और परंपरा को भी सहेजता रहता है। भारतीय साहित्य में न पूर्ण त्याग और न आत्मसात, यही वर्तमान की दशा है। साहित्य सामाजिक मूल्यों को धारण करता हुआ नए जीवन मूल्यों को सृष्टि के मार्ग से गतिशील रहता है, इसलिए प्रत्येक युग में जीवन मूल्य तथा जीवन दर्शन से भिन्नता स्वाभाविक पाई जाती है। जीवन मूल्य पर साहित्य का जीवन दर्शन आधारित रहता है। जीवन परिवर्तनशीलता के कारण मनस्थिति बदलती रहती है। साहित्यकार अपने साहित्य के अंतर्गत समाज के मूल्यों को रचता है। साहित्य तत्कालीन जीवन मूल्यों को धारण करता है, नवीन मूल्यों से समाज को दिशा देने का कार्य करता है, परंपरा से जुड़ा होने के कारण नई दिशा भी देता है। विज्ञान से विनाश भाषा आंदोलन की पृष्ठभूमि बदल जाती है। साहित्य की स्थिति भी बहुमुखी हो चली है। जीवन संतुलन डगमगाता चल रहा है। नए युग में नए और पुराने की टकराहट है। आधुनिक को स्वीकार किया जा रहा है। धार्मिक दार्शनिक और राजनीतिक गतिविधियों के मध्य मन मस्तिष्क सामंजस्य स्थापित करके सहज मार्ग खोजने में नवीन मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। पुराने संतों कबीर रहीम और तुलसी को समझने से अलग राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समन्वय और नए विचार, नए चिंतन, नए जीवन मूल्यों को जोड़ने से पूंजीवाद ने मानवीय मूल्यों को मानव से दूर किया है। मानवता का पाठ साहित्य और पाठशाला में पनपती है। आज नैतिक जिम्मेदारी से परे गुरु की गरिमा घर घर पर्ची बांटते रोजमर्रा के अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है। साहित्य काठ की पट्टी पर धूल के गर्त का आवरण ओढ़े अपना दम तोड़ती है। शिक्षक दूसरों के दरवाजे पर माता पिता और बच्चों की संख्या जोड़ रहा है। मूल्य विहीन समाज में मानव जीवन स्थायी नहीं बनता है। साहित्य के आयाम दशा और दिशा का बोध कराते हैं। किसी भी काल के साहित्य से उस समय की परिस्थितियों के रहन सहन जीवन यापन का पता चलता है। साहित्य समाज से प्रभावित भी होता है। शरीर और आत्मा के संबंध की ही भांति साहित्य और समाज का संबंध होता है। समाज नष्ट हो सकता है किंतु साहित्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। साहित्य का लक्ष्य
मनोरंजन और उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य ज्ञान राशि का कोष वर्धन होना चाहिए। वैदिक कालीन साहित्य और रामायण महाभारत के साथ ही नाटक साहित्य

समृद्ध ज्ञान परंपरा के वाहक रहे हैं। बोलियों के साहित्य तो शिक्षित और अशिक्षित समाज के लिए रहे हैं। कहावतों और कथाओं के मार्ग से राष्ट्रीय समृद्धि के मार्ग सुसज्जित हुए हैं। आज भारतीय साहित्य वैश्विक संपदा की धरोहर हैं और परंपरा सन्मार्ग की पथ प्रदर्शक हैं। मानव जीवन में क्या घटित हो रहा है, साहित्यकार अपने चिंतन, विश्लेषण और अनुभव के आधार पर अपने शब्दों में लिख देता है। साहित्य सदैव जनमानस को सकारात्मक सोच तथा लोक कल्याण के कार्यों के लिए प्रेरणा दे रहा है। प्रत्येक देश का साहित्य अतीत और वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्य करता है। साहित्य स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने की विचारधारा का पोषक है। भारतीय परिवेश विविध संस्कृति का देश है, जहां मार्मिक और शुद्ध

0: भारतीय परिवेश विविध संस्कृति का देश है, जहाँ मार्मिक और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। भारत विविध संस्कृति का देश है, यहाँ की मूल समस्या असमानता, गरीबी और बेरोजगारी है। जनसंख्या बहुजाती और बहुभाषी होने एवं लोकतंत्र की व्यवस्था के अधीन संचरित है। विज्ञान, तकनीक और भाषा बोली के बीच शिक्षा के परिवर्तन से प्रभावित समाज और भावनात्मक मानक गरिमा की ऊंचाई पर पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहा है। उच्च शिक्षा पलायन को जन्म दे रही है। इसे साहित्य और शिक्षा की उपलब्धि या अवसर के सदुपयोग का अभाव कहा जाएगा। कम खाएं, गम खाएं, घर से न जाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में नई युवा पीढ़ी को परिचित कराया, चिंता व्यक्त की, रचनात्मक सुधार की कामना की। देश की परतंत्रता से स्वतंत्रता तक का साहित्य इस बात का प्रमाण है। विचारधारा का सहज और सरल प्रयोग साहित्य में होता है। साहित्य भी विशिष्ट भाव से बनता है। राष्ट्रीयता का मूल संस्कृति ही होती है और आधार साहित्य बनता है। राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में भूगोल, इतिहास, संस्कृति की भाषा को साहित्य समृद्ध करता है। वर्तमान को कलात्मक और यथार्थ रूप में समाज के सम्मुख रखता है। सभ्यता भौतिक प्रगति इसे दर्शाती है। आंतरिक सभ्यता मानवता को तथा मानवीय मूल्यों को, आदर्शों को साहित्य ही दर्शाती है। साहित्य ने तत्काल पीड़ित के आंसू भी पोंछे हैं। वास्तव में तन मन की सोच साहित्य में है। जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। समाज समय से और भावनात्मक रूप से मानवता को साहित्य ही रेखांकित करता है। इसी कारण जीवन संतुलन में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर करुणा शंकर दुबे की वार्ता, साहित्य का जीवन संतुलन में योगदान। आवाज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलों का। पहले आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में प्रदीप राव की लिखी ये गजल।

सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोल, चेहरे सारे सुने सुनाए और तंदूर पे मक्खन।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना, सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

दान सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन डेढ़

डेढ़ बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दान सिंह की

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा, जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

0: फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।
1: मेरे हम नहीं।

0: लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल न जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।
1: वो

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति

0: रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

इस समय आप सुन रहे हैं किशोर कुमार को बुढ़ा मिल गया फिल्म में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, जिसे संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना इम्तिहान फिल्म में। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत। इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं चरस फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का राग पूरिया कल्याण में सितार वादन। आपके साथ तबले पर संगत की है कुमार लाल मिश्रा ने।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का राग पूरिया कल्याण में सितार वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत की थी कुमार लाल मिश्रा ने।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है।

उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।